एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून 2026। इस समय सुबह के 5:58 मिनट 30 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

एफएम बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, ये सभी ईश्वर से हमें मिलाने वाले पथ में बाधा है। इसीलिए हमें इन्हें छोड़कर ही आगे बढ़ना चाहिए।

हम ईश्वर को प्रेम के माध्यम से पा सकते हैं। भगवान भक्त के हृदय की भावनाओं और प्रेम को देखकर पल भर में भोर विहल हो जाते हैं।

भक्तों की नैया को भव सागर से पार लगाने वाली महामाई अपने सभी भक्तों को शक्ति, बुद्धि और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं।

उनकी परम कृपा कृपा के बिना हमारा इस भवसागर से पार लगना संभव नहीं। ये केवल तभी संभव हो सकता है जब वो हम पर अपनी कृपा का हाथ रखें।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM बैंड 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं रामचरित मानस गान। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है, प्रस्तुति स्वर श्रीकांत परगांवकर का है।

अगस्त्य मुनि के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण। उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उन्हें भक्ति, वैराग्य अथवा ज्ञान कुछ भी प्राप्त है। चित्रकूट से पंचवटी जाते हुए श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के दर्शन जब मुनि सुतीक्ष्ण को प्राप्त हुए तो अपने आश्रम में ले आकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता था कि वे किस प्रकार प्रभु की विनती करें। नील कमल के समान श्री राम का शरीर है, जिस पर मुनियों जैसा वेश और सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है। सुतीक्ष्ण की कामना है कि मोह रूपी वन को भस्म करने वाली आग तथा संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान प्रभु सदा मुनिगण की रक्षा करें। संशय रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए प्रभु गरुड़ हैं। अत्यंत कठोर तर्क से उपजने वाले विषाद का वो परिष्कार करते हैं। यद्यपि उनका निर्मल, व्यापक तथा अविनाशी रूप भक्तों के हृदय में सदा निवास करता है, फिर भी मुनि सुतीक्ष्ण प्रभु के वनवासी रूप को ही अपने हृदय में बसाना चाहते हैं।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था, प्रस्तुति स्वर था श्रीकांत परगांवकर का। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज के दिवस की बात करें तो आज शनिवार है, विक्रम संवत 2083 के अधिक ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, तदनुसार 6 जून 2026। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं ये संदेश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।

शाम 6:20 पर आप सुनेंगे गीता संदेश, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे अध्याय 5 के श्लोक 4 से 6 की व्याख्या। व्याख्याकार होंगी डॉक्टर नीमा रानी।

शाम 6:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम किसानवाणी का। कार्यक्रम ग्राम संसार आप सुनिएगा शाम 7:00 और सुबह 7:40 पर आप सुनेंगे हरियाणवी लोकगीत का कार्यक्रम बाजय नगाड़ा।

युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:30, सुबह 7:10 पर आप आनंद लीजिएगा कार्यक्रम दिल पुकारेगा। सुबह 8:30 पर हम लाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे,

ये थी हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7:00 सुनिएगा हिंदी समाचार, 7:05 पर आप सुनेंगे इंग्लिश न्यूज़, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: देशेन भारतीयदलं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों अभी आपने सुना गीत 1961 में आई फिल्म ससुराल से, और कार्यक्रम दिल पुकारे में हम अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जीने की राह से, और ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों, तो अभी आपने सुना गीत फिल्म जीने की राह से, और ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म श्री 420 से। ये गीत है शैलेंद्र का लिखा हुआ और इस गीत के गायक कलाकार हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर। संगीत है शंकर जयकिशन का।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत फिल्म श्री 420 थे, और ये गीत था मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। आइए कार्यक्रम दिल पुकारे में हम आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म ब्रह्मचारी से। ये फिल्म आई थी 1968 में और गीत है हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल पुकारे आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सरस्वती चंद्रा से। ये गीत है इंदीवर का लिखा हुआ और इंदीवर के लिखे इस गीत को आवाज़ दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: दोस्तों, आपने सुना गीत फिल्म सरस्वती चंद्रा से। आइए कार्यक्रम में चलते चलते अब आपको सुनाते हैं ये अंतिम गीत फिल्म आन मिलो सजना से। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।
2: फिर कब मिलोगे?
1: जब तुम कहोगे।
2: जुम्मे रात को?
1: हाँ हाँ आधी रात को।
2: कहाँ?

दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम दिल पुकारे अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल पुकारे FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:04

0: 45 मिनट हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाजय नगाड़ा। हरियाणवी लोकगीत के कार्यक्रम बाजय नगाड़ा में हमारे आज के कलाकार हैं वर्षांजलि व सखियां। आइए कार्यक्रम में पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीत का कार्यक्रम बजाए नगाड़ा, जिसमें हमारी आज की कलाकार थी वर्षांजलि व सखियां। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 8:15 पर सुनिएगा इंग्लिश न्यूज़, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
1: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
6: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
7: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
8: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
10: Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan's Scripps history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26, despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
11: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है.
10: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
11: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है. भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारण का गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था.
10: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
12: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
10: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26, with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Program Implementation yesterday released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fishery sectors. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign, launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility and encourage sustainable farming practices. A report.
13: The Agriculture Ministry informed that over 17,800 awareness programs have been organized so far under the campaign, reaching nearly 6.98 lakh farmers. In addition, around 3,700 training programs have been conducted, providing information on balanced fertilizer use, soil health management, and scientific farming techniques to more than 1.57 lakh participants. The ministry said that over 8,850 field demonstrations have also been organized to provide practical exposure to farmers on the use of organic and alternative nutrient sources, as well as integrated nutrient management techniques. These demonstrations are aimed at improving long-term soil productivity and reducing excessive dependence on chemical fertilizers. With Akshit and Rohan's report, Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
10: Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has said that Pakistan is abusing its temporary membership of the UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir, and it should be mindful of its responsibilities. India's permanent representative P. Harish said that empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India.
6: I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and false narratives. I'd like to make it loud and clear. Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Any assertions to the contrary are baseless, devoid of and inconsistent with historical facts. Empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality. In the interest of time or the wider UN membership, I would not delve any further into this.
10: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi today. The Foreign Affairs Ministry of Nepal has said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas, including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Mr. Khanal is currently on a three-day visit to India. During the weekly press briefing, spokesperson for the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said the visit will help further strengthen the special partnership between India and Nepal.
2: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
10: Russia's President Vladimir Putin has turned down an offer for in-person talks with his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky, saying he sees no point in such a meeting for now. Putin delivered the remarks during Russia's flagship economic forum in St. Petersburg yesterday, a day after Zelensky shared an open letter appealing for a face-to-face meeting in which the two leaders could hash out an end to the war. Zelensky responded later, saying Putin's rejection of his proposal showed that the Kremlin had no wish to end the war. US forces have struck Iranian coastal surveillance radar installations near the Strait of Hormuz after shooting down four Iranian drones which targeted regional maritime traffic.
14: The incident marks the latest flashpoint in a three-month-old conflict, further straining already deadlocked peace negotiations between Washington and Tehran. More from our correspondent from Dubai.
15: The strike came as diplomatic efforts between Washington and Tehran remained stalled, with a major sticking point of being Iran's demand for the release of $24 billion in frozen assets held overseas. Iranian officials have reportedly linked progress on any interim agreement to the unfreezing of funds, while the United States is reluctant to give up what it sees as a key source of leverage in these negotiations. Meanwhile, in Lebanon, Hezbollah has rejected a U.S.-brokered ceasefire proposal accepted by Israel and the Lebanese government, insisting that any agreement include a full Israeli withdrawal from southern Lebanon. The group has also released drone footage showing attacks on Israeli forces near the Beaufort Castle, a strategic hilltop fortress captured by Israeli forces during the recent offensive. Iran has reiterated its support for Hezbollah and maintains that Israeli pullout from Lebanon is essential for any broader regional settlement. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
14: In Keralam, red alert indicating extremely high rainfall is declared in 5 districts till 9th of June. More from our correspondent.
16: Red alert indicating extremely heavy rainfall has been declared in the districts of Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod in Keralam. 6 districts are under orange alert indicating isolated very heavy rainfall, while the remaining 3 districts are under yellow alert indicating isolated heavy rainfall. Intensive rainfall is expected over the next 3 days in Keralam. Places including Kannur, Kozhikode, Kochi and Alappuzha have recorded more than 15 mm of rainfall since 7 a.m. today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
14: Meanwhile, the weather agency predicts a thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. Meanwhile, thunderstorm conditions are expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha and Rajasthan today. Furthermore, IMD forecast heat wave conditions over coastal Andhra Pradesh for the day. On to sports. In chess, Grandmaster R. Pragyananth has created history by becoming the first Indian to win the Norway chess title in Oslo with a final round victory over Germany's Vincent Kaimer. Pragyananth, who began the day in third place, secured a crucial classical win worth 3 points to finish with 18 points and sealed the title. The 20-year-old from Chennai achieved a feat that had eluded Indian chess legend Vishwanath Anand and reigning world champion D. Gukesh since the tournament began in 2013. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
17: Thank you, Shagun. Almost all the dailies quote the Prime Minister's statement regarding strong economic growth, with the Indian Express's headline being Financial Year 26 growth estimate raised to 7.7%. Momentum strong. The paper also adds to draw funds, prop rupee, government scraps FII capital gains withholding tax on bonds. While the Financial Express reports economy sprints to 7.8% growth in fourth quarter for 2026. The first tranche of India-US interim trade deal likely by mid-July, says Piyush Goyal, reports the Hindu Business Line. The Pioneer informs Shah vows zero tolerance on demographic shifts as he addressed BSF personnel at Lankamura border outpost. CBSE drops GoEMS portal for re-evaluation with student and examination data migrated to infrastructure under the board's direct control, cites Hindustan Times. The Asian Age headlines, Putin says Russia ready to jointly build Su-57 stealth jet with India, suggests strong strategic partnership between the two countries. And finally, wind from Milky Way's black hole called Sagittarius A has been discovered after 5 decades of trying. Its wind is like a gentle breeze, not a hurricane. The wind has carved out a huge conical cavity in space, informs the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
14: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyananth scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सभी श्रोताओं को महक का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के दौर में भागदौड़, तनाव, अनियमित दिनचर्या और हमारा असंतुलित खानपान हमारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को बढ़ा रहा है। ऐसे में हमारी दिनचर्या में अगर हम थोड़ा सा बदलाव कर लें, यानी हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर कर लें, तो हम स्वस्थ, बेहतर और संतुलित बना सकते हैं हमारी ज़िंदगी को। और ऐसा हम कर सकते हैं खुद को स्वयं से और प्रकृति से जोड़कर, यानी यौगिक जीवन शैली को फॉलो करके। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ये भी हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

जी हाँ श्रोताओं, हम जानते हैं कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हम बताएं आपको जल्दी से हमारा आज का प्रश्न, और आप जो है वो प्रश्न का जवाब दें और कार्यक्रम में अपने नाम शामिल करवा लें। तो भाई, हम अपने श्रोताओं को तो इंतज़ार ज़्यादा नहीं करवाएंगे, तो आइए आपको बताते हैं हमारा आज का प्रश्न। दोस्तों, आज आपको बताना है, हाल ही में खबरों में रहा विरूपाक्षा मंदिर

दोस्तों, योगिक जीवन शैली का मतलब है ऐसा जीवन जीना जो तन मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए। ये सिर्फ योगासन नहीं बल्कि इसमें हमें अपनी सोच, व्यवहार, आहार और दैनिक दिनचर्या को शामिल करना पड़ता है। ये हमारी स्वस्थ आदतों, हमारे सकारात्मक विचारों, हमारे नैतिक मूल्यों और ज़िंदगी में हम कितने अनुशासित हैं इस बात पर निर्भर करता है। ये हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस तरह से हम अनुसरण कर सकते हैं योगिक जीवन शैली का? भाई, इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम किस तरह का आहार ले रहे हैं। अगर हम संतुलित आहार लें, यानी हम सात्विक और पौष्टिक भोजन लें, ताजे फल, सब्जी, अनाज को अपनी भोजन में, अपने आहार में शामिल करें, इसी के साथ साथ हम पर्याप्त मात्रा में पानी लें और ज़्यादा तला भुना मसालेदार भोजन ना खाएं, संतुलित आहार से हम योगिक जीवन शैली का अनुसरण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ज़रूरी है कि हम नियमित योग को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि नियमित योग से जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ और लचीला बना रहता है, और प्राणायाम से हमारा जो श्वसन तंत्र है वो मजबूत होता है, और इसी के साथ साथ हमें मानसिक शांति भी मिलती है। और दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा अनुशासित कर लें तो योगिक जीवन शैली का हम अनुसरण कर सकते हैं। इसमें शामिल है कि हम समय पर उठें, समय पर सोएं, इसी के साथ साथ हम अपने हर कार्य को नियमित रूप से करें। और भाई, देखा जाए तो काम तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ज़रूरी होता है कि हम अपने शरीर को पर्याप्त विश्राम दें और हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें। किसी भी बात को लेकर अगर हमारे मन में कभी कोई गुस्सा आता है, अहंकार आता है, या किसी को लेकर हमारे मन में ईर्ष्या आती है, तो अगर हम उसे दूर कर दें, उसे अपने मन में ना आने दें, अपनी विचारों को, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, तो ऐसे में हम योगिक

जीवन शैली का अनुसरण कर सकते हैं। और अगर हम अपने दैनिक दिनचर्या में ध्यान को थोड़ा शामिल कर लें तो भाई क्या बात है। इसीलिए दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जानकारी है जिनका अनुसरण करके हम योगिक जीवन शैली का अनुसरण कर सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
6: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
7: दोस्तों, आइए अब आपको जानकारी देते हैं सुनील दत्त के बारे में। सुनील दत्त का जन्म आज ही के दिन 1929 में अविभाजित भारत के झेलम जिले के खुर्द गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम बलराज दत्त था और 1947 में विभाजन के बाद उनका जो परिवार था वो पंजाब आ गया था और बॉम्बे में उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के लिए वेस्ट बस डिपो में क्लर्क की नौकरी की और फिर 1955 में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अभिनय करियर की शुरुआत की। दोस्तों, सुनील दत्त ने 1957 में मदर इंडिया फिल्म में बिरजू के किरदार ने लोकप्रियता दिलाई उन्हें और उन्होंने वक्त, पड़ोसन, गुमराह, हमराज, मुझे जीने दो, रेशमा और शेरा जैसी यादगार फिल्में भी की। उसके बाद वो राजनीति में गए और 5 बार लोकसभा सदस्य चुने गए। और ये थी जानकारी सुनील दत्त के बारे में। और आइए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं उनकी अभिनीत फिल्म से ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम में हमने आपसे प्रश्न किया था कि हाल ही में खबरों में रहा विरूपाक्षा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आइए आपको बताते हैं उस प्रश्न का सही जवाब और उन श्रोताओं के नाम भी जिन्होंने हमें आज के प्रश्न का सही जवाब दिया है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने हम्पी स्थित विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य गोपुरम के अंदर निर्मित दीवारों को हटाया है। और आपको बता दें कि जो विरूपाक्ष मंदिर है, इसे पंपापति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये भगवान विरूपाक्ष यानी भगवान शिव को समर्पित है। यह कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और ये मंदिर हम्पी के स्मारकों के समूह का हिस्सा है, जिसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें आज के प्रश्न का सही जवाब दिया है। रामनगर कैथल से आप हैं सुनील दत्त, विनायक दत्त और आशा रानी। योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर गुरशब्द सिंह राहुल। शिलाई हिमाचल प्रदेश से आप हैं ललिता सिंह भगवान सिंह। गांव ढाणी कुतुबपुर हांसी से रामधारी अवाना, अनाया ओजस अवाना। खमरिया छत्तीसगढ़ से आप हैं साबित खान और धर्मेंद्र प्रजापति। शिलाई हिमाचल प्रदेश से तन्मय सिंह सिद्धांत सिंह। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा। आकली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी। गांव सातड़ी से ईश्वर दयाल कंबोज, लाजवंती कंबोज और भव्य कंबोज। और हमें सही जवाब दिया है गांव सातड़ी से आप हैं मदन कंबोज, प्रियांशु कंबोज और स्मृत कंबोज। सोलन हिमाचल प्रदेश से आप हैं टिया और कृष्णा। गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कडवासरा, सचिन कडवासरा और योगेश कडवासरा। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया विशाल सपकाल। बीलराम गेट कासगंज से हमारे श्रोता हैं एम असलम सैफी, सद्दाम सैफी और सोनी सैफी। और इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से आप हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन और हेयांश कुमार चंदन। जवाहर नगर दुर्ग से आप हैं आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, चैतन्य मस्किन, मेघा आशीष। और हमें सही जवाब दिया है गांव जागोद से आप हैं शंभुदयाल खटक, विमला योगेश, दीपक। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से आप हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, बेबी बॉय हिमाक्ष। इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है आप हैं मीन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर।

छत्तीसगढ़ से आप हैं भाई मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। रेलवे रोड गंज रुंडवारा से आप हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और बेबी फातमा गाजी। लाडवा से आप हैं चांद ढींगड़ा, ईशू और एमी। राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन और कृष्णा जैन। और हमें सही जवाब दिया है आप हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह। बीर शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे और अंजलि करवा। खेल बाजार पानीपत से आप हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना मल्होत्रा और अनिल कटारिया। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार। गांव चोहलादा बागपत से आप हैं संजय ढींगिया और नमन ढींगिया। और इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है आप हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया और तुषार देव तामोरिया। गिरा पिलारी छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र और आशीष साहू। और कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बाता और नीलम बाता। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल और विशाल सपकाल। और हमें सही जवाब दिया है आप हैं ताज मंजिल। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवार। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से आप हैं पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्राव्या रामटेके। रावर करनाल से हमें सही जवाब दिया है आप हैं ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आप हैं जगदीश रायगर, गंजना रानी गर्ग और विकास गोयल। तराईमाल रायगढ़ से आप हैं अंशु साहू और निशु साहू। इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है ऊपरकोट बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शहनवाज सरफराज अब्बासी। और बल्लारपुर जिला जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से आप हैं हेमंत कुमार भाशंकर, श्रीमती प्रिया भाशंकर और कुमारी समीक्षा भाशंकर। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से आप हैं सोपान तायड़े और विजया तायड़े। छत्तीसगढ़ पलारी से हमें सही जवाब दिया है आप हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और प्रिंस वर्मा। डेर पाटन गुजरात से आप हैं धीरज वी रबारी। और भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन। और हमारे श्रोता हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर भाटिया, एंजल भाटिया और सोनू भाटिया। गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी। मदनपुर छत्तीसगढ़ से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। और हमें सही जवाब दिया है आप हैं छत्तीसगढ़ बोडसरा से वैभवी साहू, विभूति साहू। इसी के साथ रायसन करनाल से आप हैं रजनीश बत्रा और कबीर। दरियापुर बाबली महाराज से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, शहनाज अब्बासी और नवेद सुहेल अब्बासी। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। इसी के साथ हमें सही जवाब दिया है आप हैं नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और हैप्पी राय। गांव फुरलक जिला करनाल से आप हैं कार्तिकेय पन्नू, गजराज पन्नू और आल पन्नू। हमें सही जवाब दिया है इसी के साथ आप हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम। भीमखोज तरपोंगी से हमारे श्रोता हैं संतोष गुप्ता और देवकी गुप्ता। बनबगेरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़ और आशीष गौड़। अमीर खुसरो रोड गंज रुंडवारा से डॉक्टर दबीरुल हसन, शबनम अनवार और शेख मोहम्मद कलीम। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा और यश मंसूरी। और ये थे उन सभी श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें आज के प्रश्न का सही जवाब दिया है। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम में हम आपसे बात कर रहे थे योगिक जीवन शैली का अनुसरण करने की। और क्या आप जानते हैं कि यदि योगिक जीवन शैली को हम अपने जीवन में शामिल करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं? भाई, हमें पहले इसकी जानकारी तो होनी चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ का अनुसरण करना चाह रहे हैं तो उसके क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो आइए आपको बताते हैं इस बारे में। दोस्तों, यौगिक जीवन शैली को जीवन में शामिल करने के बहुत से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक फायदे हैं। अगर शारीरिक लाभ की बात की जाए तो यौगिक जीवन शैली का अनुसरण करने से हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इसी के साथ हमारे शरीर में लचीलापन आता है। और अगर मानसिक लाभ की बात की जाए तो हमारे तनाव, चिंता और अवसाद में कमी आती है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और हमें मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। और अगर हम सामाजिक लाभ की बात करें तो समाज में हमारे जो रिश्ते हैं, परिवार में हमारे जो संबंध हैं, वो बेहतर होते हैं और हमारे व्यवहार में विनम्रता भी आती है। और आध्यात्मिक लाभ की बात की जाए तो इससे हमें जो है वो आत्म जागरूकता हमारी बढ़ती है और जीवन के उद्देश्य को समझने में हमें मदद मिलती है और इसी के साथ साथ हमारे मन और आत्मा के बीच जो है वो एक सामंजस्य स्थापित होता है। तो दोस्तों, यौगिक जीवन शैली जो है वो संतुलित, अनुशासित और जीवन को सार्थक बनाने की एक पद्धति है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और कार्यक्रम के तुरंत बाद हम फिर से हाजिर होंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे लेकर। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने 7 साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
3: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वही लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
2: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
3: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
2: आप जब उस समय नदी की स्थिति या उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
3: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
2: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
3: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
2: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
3: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
2: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
3: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
2: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
3: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
2: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
3: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनरामा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
2: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
3: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
2: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
3: हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
2: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
3: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
2: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
3: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
2: क्या ये आपको उपकरण से जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
3: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
2: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
3: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
2: आप जिस तरह से यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
3: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
2: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
3: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का भी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
2: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया था। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं और हम फिर से हाजिर हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे लेकर।

दोस्तों आइए अब आपको कार्यक्रम में जानकारी देते हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई जयंती के बारे में। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई असम के प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने असम की सांस्कृतिक पहचान, एकता और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। असम के लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उन्हें लोकप्रिय की उपाधि भी दी गई। गोपीनाथ बरदोई का जन्म जून 1890 को असम के नगांव जिले के राहा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो असम में प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए गुवाहाटी और कोलकाता में अध्ययन किया। दोस्तों वो एक मेधावी छात्र होने के साथ साथ समाज सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित थे। गोपीनाथ बरदोलाई ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से संघर्ष किए और जनता को जागरूक किया। स्वतंत्रता के बाद वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री बने और उन्होंने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया और उनके नेतृत्व में असम ने विकास की नई दिशा प्राप्त की। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान असम की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना था। देश और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया। दोस्तों ये थी जानकारी लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई के बारे में।

दोस्तों इसी के साथ दीजिए अनुमति कार्यक्रम सुबह सवेरे को अभियान संपन्न करने की। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है आपकी बात आकाशवाणी @gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वरांजलि।

सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वरांजलि में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। और आइए कार्यक्रम स्वरांजलि की शुरुआत हम करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत दलेर मेहंदी की आवाज़ में।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
1: के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में, जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बने फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

0: था।
1: सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो गया।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए,
4: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
5: शुक्रिया, शुक्रिया।
4: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में आप सभी श्रोताओं को महक का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं, कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में जो हमारे आज के विषय हैं हम आपको बता देते हैं। आज के हमारे विषय हैं विकसित भारत 2047 और क्या है देश के सामने चुनौतियाँ, और इसी के साथ एक विषय है घरों में लगाएं औषधीय महत्व के पौधे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में हम आपको इन विषयों पर जानकारी भी देंगे, इन विषयों के संबंध में हम आपसे बातचीत भी करेंगे और इसी के साथ हम आपको सुनवाएंगे आपके पसंदीदा गीत। तो दोस्तों जब तक हमारे श्रोता हमें फ़ोन मिलाते हैं तब तक के लिए हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, अनंत जी इस गीत का।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते
1: आवाज कट
0: कुरुक्षेत्र
1: आ
0: में?
1: रही है मैडम थोड़ी। हेलो
0: हेलो हेलो,
1: हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं हाँ कार्यक्रम
1: आवाज
0: नमस्ते कुरुक्षेत्र?
1: बहुत ज्यादा कट आ रही है आवाज।
0: हाँ जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में?
1: थोड़ा जी आवाज।
0: हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में जी? आपका शुभ नाम बताइए।
1: राकेश कुमार मलेर, कोटला, पंजाब से बात कर रहा
0: हूँ। अच्छा जी, राकेश कुमार जी, क्या करते हैं आप?
1: जी फैक्ट्री में काम करते हैं मैडम जी।
0: अच्छा जी, और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम सुनते हैं?
1: हाँ जी
0: जी। कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: बस ज्यादातर तो यही सुनते हैं जी।
0: अच्छा जी, फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: जी जी जी
0: जी। तो कौन सा फरमाइशी गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: फिर दीवाना का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: अच्छा जी, तो आपकी फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं दीवाना फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं? हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी
1: जी नमस्कार
0: जी नमस्कार,
1: मैं नरेश कुमार शर्मा, बड़ा गांव जिला करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी नरेश कुमार जी, काफी समय बाद आपका फोन लगा है हमारे कार्यक्रम में।
1: जी मैम, मैंने 3-4 महीने के बाद लगाया।
0: अच्छा जी जी, चलिए बताइए फिर, आप आज आपने इतने समय बाद फोन लगाया है कार्यक्रम में, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये मैम भ्रष्टाचार मूवी का जी।
0: जी गीत के बोल बताइए।
1: मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती है।
0: अच्छा जी, तो क्या आप इस गीत को गुनगुनाना भी चाहेंगे?
1: नहीं मैं गुनगुना सकते।
0: अच्छा जी जी, तो आप गीत सुनना चाह रहे हैं?
1: बस यही।
0: हाँ जी, तो हम आपकी फरमाइश को कर रहे हैं पूरा, और आपको सुनवा रहे हैं आपका ये पसंदीदा गीत।
1: थैंक यू मैम
0: जी।

दोस्तों आइए अब आपको कार्यक्रम में जानकारी देते हैं कि घरों में औषधीय पौधे जो है वो लगाने क्यों जरूरी है, क्या है औषधीय महत्व के पौधों को लगाने की हमें जरूरत। दोस्तों प्रकृति ने हमें बहुत से ऐसे पौधे दिए हैं जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये पौधे ना सिर्फ हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि बहुत सी बीमारियों के उपचार में भी हमें मदद करते हैं। और आज के समय में बढ़ते प्रदूषण और जैसे स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, अगर उनको देखा जाए तो घरों में औषधीय महत्व के पौधे लगाना भाई बहुत जरूरी होता जा रहा है। क्यों जरूरी है, क्या है इनका महत्व? अगर हम स्वास्थ्य की सुरक्षा देखें तो औषधीय पौधे जो है वो सर्दी खांसी बुखार अपच या त्वचा जैसी अगर हमें कोई समस्या हो जाती है तो उनका प्राकृतिक उपचार करने का बहुत अच्छा स्रोत है। इसी के साथ साथ बहुत से औषधीय पौधे जो है वो वायु को शुद्ध करते हैं और इसकी वजह से वातावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है भाई। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि अगर हमें कभी छोटी मोटी कोई स्वास्थ्य समस्या हो जाती है जैसे कि सर्दी खांसी बुखार, तो हर समय हमें अनावश्यक दवाओं के सेवन से हम बच सकते हैं अगर हम घरेलू औषधीय पौधों का उपयोग करें तो। और दोस्तों औषधीय पौधे जो घरों में हम लगा सकते हैं उनमें हम लगा सकते हैं तुलसी को। तुलसी जो है वो सर्दी खांसी बुखार में लाभकारी होती है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इसी के साथ साथ वातावरण को शुद्ध भी करती है। और ऐसे ही एक पौधे को हम लगा सकते हैं जो है एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा त्वचा और बालों के लिए लाभदायक होता है। इसी के साथ साथ अगर कहीं हमारे शरीर पे कभी ऐसा हुआ है कि कहीं जलन हो रही है या कहीं कट लग गया है तो उसमें भी एलोवेरा जो है वो राहत देता है और इसी के साथ साथ पाचन तंत्र के लिए भी उपयोगी माना जाता है। दोस्तों हम घर में नीम को भी लगा सकते हैं क्योंकि नीम में जो है वो एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं और ये किसी भी तरह के स्किन डिजीज यानी त्वचा रोग में उपयोगी होता है। और अगर कभी मच्छर या कोई कीट जो है वो हो हमारे घर में तो उन्हें दूर रखने में भी ये बहुत मदद करता है। अगर हम पुदीना की बात करें तो दोस्तों पुदीना को अगर हम घर में लगाते हैं और हमें उसकी ज़रूरत जब रहती है तो पुदीना जो है वो हमें पाचन में सहायता करता है। और गर्मी का जैसे आजकल मौसम है तो गर्मियों में अगर हम पुदीना से कोई पेय पदार्थ बनाते हैं तो वो गर्मियों में हमें शीतलता प्रदान करता है, है ना। और अनेक पेय पदार्थ बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं और हम औषधि के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गिलोय है, गिलोय बुखार और संक्रमण अगर हमें कोई हो जाता है तो उसमें उपयोगी होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और हम लेमन ग्रास को भी लगा सकते हैं अपने घर में अगर हम चाहें तो। लेमन ग्रास जो है वो हर्बल चाय बनाने में बहुत उपयोगी रहता है। इसी के साथ साथ अगर हम लेमन ग्रास का यूज़ करते हैं उपयोग करते हैं तो तनाव कम करने में और हमें ताजगी देने में भी ये बहुत सहायता देता है और इसी के साथ साथ ये हमारे वातावरण को बहुत सुगंधित बना देता है। तो दोस्तों औषधीय पौधे जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बहुत लाभकारी है और इन्हें हम घर में आसानी से लगा भी सकते हैं। इन पौधों को अगर हम अपने घर में लगाएंगे तो ये ना तो सिर्फ हमारे परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं बल्कि हमारे प्रकृति के संरक्षण में भी अच्छा योगदान देते हैं।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
5: हेलो, हेलो,
6: नमस्कार जी।
5: हाँ जी, नमस्कार जी। कौन से श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में?
6: मैं कवर सिंह जी, गांव वाले से फोन लग
5: रही जी। कवर सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या करते हैं आप?
6: खेती बाड़ी करते हैं।
5: अच्छा जी, खेती बाड़ी करते हैं, तो फिर आजकल कौन सी बिजाई की हुई है आपने?
6: ये दिल के साथ धान लगवाया जी।
5: अच्छा जी,
6: हाँ जी, कुछ ऐसे लग जाएंगे जो बात टमाटर लग रहे थे बाद में
5: जी। तो क्या आप खेतों में कोई औषधीय गुणों के पौधे भी लगवाते हैं, पेड़, जैसे कि नीम हो गया या गिलोय हो गया?
6: नीम के पेड़ तो खड़े जी।
5: अच्छा जी,
6: बाकी घर में जी गमलों में लगा रखी थी काफी
5: जी,
6: नाक दोनों पे तुलसों के पत्ते पत्ते के उसके भी।
5: हाँ जी, जी तो कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
6: ये फकीरा फिल्म का है जी, चलना के लटन।
5: हाँ जी, तो आपकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।
6: हाँ
5: जी, हेलो,
6: सुनने वाले सभी दोस्तों के लिए नमस्कार
5: जी। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
6: धन्यवाद।

दोस्तों, भारत वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा और इस अवसर तक भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे विकसित भारत 2047 के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय, तकनीकी प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करना है। और हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में अनेक चुनौतियां भी है जिनका समाधान जरूरी है। दोस्तों, विकसित भारत 2047 भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना है और इसके अंतर्गत मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल और तकनीकी विकास, पर्यावरण संतुलन और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर जैसे लक्ष्यों पर बल दिया गया है। दोस्तों, जनसंख्या और रोजगार की बात करें तो भारत विश्व की जो है वो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है। बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में यदि युवा जो है वो कुशल हों तो हमारा देश जो है वो विकास करेगा। और शिक्षा की गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो यद्यपि शिक्षा का प्रसार हुआ है और इसी के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो है वो सभी तक पहुंच होना बहुत जरूरी है। आधुनिक कौशल अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना समय की मांग है। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जो है वो एक बड़ी समस्या है और विकसित भारत के लिए सभी नागरिकों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और देखा जाए तो प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जो है वो हमारे देश को विकसित अगर हमें बनाना है तो इस ओर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है और विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो कृषि पर हमारे देश की जो बड़ी आबादी है वो निर्भर है। किसानों की आय बढ़ाना, आधुनिक तकनीक का उपयोग और जल संरक्षण जैसी समस्याओं की ओर ध्यान भी बहुत जरूरी है। और सड़क, रेल, बिजली, जल आपूर्ति और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में निरंतर सुधार ताकि हमारा देश विकास की ओर बढ़ सके। इसी के साथ साथ डिजिटल भारत के विस्तार के साथ साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में सुरक्षित डिजिटल वातावरण विकसित करना बहुत जरूरी है और हमारे देश को जो है वो विकास की ओर अग्रसर करेगा। दोस्तों, विकसित भारत 2047 केवल सरकार का लक्ष्य नहीं बल्कि 140 करोड़ से अधिक भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे तो वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने स्थापित हो सकता है।

दोस्तों, हमारे देश को विकसित बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आय और अवसरों की में जो असमानता है उसे कम किया जाए, और इसी के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम भी कार्यान्वित है। यह अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य शिक्षा के अवसर बढ़ाना, रोजगार और कौशल विकास को प्रोत्साहन देना, सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों तक पहुंचाना और जीवन स्तर में सुधार लाना, और इसी के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दोस्तों, ये थी जानकारी प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में। आइए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र अब यहीं संपन्न होता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है आपकी बात आकाशवाणी @gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, FM बैंड 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया रेली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: से इसको सल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था मौसम। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: यह आवाज थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इसे लिखा था शहरयार ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में आप सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी ये रचना। गायिका है छाया गांगुली और फिल्म का नाम है गमन।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत। जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सात सात की ये गजल। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: लीजिए अब सुनिए हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं आशा भोसले और सत्यशील देशपांडे की। ये फिल्म है लेकिन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए मैटिनी शो।

मैटिनी शो में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। जी हाँ, फिल्म थ्री इडियट्स, जिसे आपने भी देखा होगा, इसी पर आज हम कुछ बातचीत कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म थ्री इडियट्स बहुत ही फेमस फिल्म है और ये फिल्म कई विषयों की पड़ताल के लिए जानी जाती है, खासतौर से शिक्षा प्रणाली की जो मुद्दे हैं, शिक्षा प्रणाली के मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी जो आलोचनाएं हैं और शिक्षा से जुड़े जो सामाजिक दबाव हैं बच्चों पर, परिवार पर, उस पर केंद्रित रही ये फिल्म थ्री इडियट्स। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, आवाजें सोनू निगम, शान और स्वानंद किरकिरे की। गीत को स्वानंद किरकिरे ने ही लिखा है और धुन शांतनु मोहिता।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। इसमें ये फिल्म 2009 में आई थी और आमिर खान के अलावा आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर, बोमिन ईरानी और ओमी वैद्य मुख्य भूमिकाओं में थे। और इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हीरानी ने किया था, गीत स्वानंद किरकिरे ने लिखे थे और संगीत था शांतनु मोहित्रा का। और हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में आमिर खान ने फुनसुक वांगड़ू के रूप में भूमिका निभाई थी रेंचो की, जिसे रेंचो के नाम से हम जान रहे थे। शर्मन जोशी जो हैं राजू रस्तोगी के रूप में बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे थे और आर माधवन फरहान कुरैशी के रूप में थे। करीना कपूर ने पिया के रूप में अपनी

0: ही राहुल कुमार को मिलीमीटर के रूप में फिल्म में दर्शाया गया था। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो थी बहुत ही शानदार तरीके से एक शानदार विषय पर फिल्माई गई। निर्माता विधु विनोद चोपड़ा थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर विषय उठाया। और कहते हैं कि फिल्म जो है चेतन भगत के उपन्यास 5.1 पर आधारित थी और इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने लिखा था। और जैसा कि हमने बताया शांतनु मोहिता ने संगीत दिया था और स्वानंद किरकिरे ने अपने गीतों से इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
0: ये स्वर हैं सूरज जगन और शर्मन जोशी के।

के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा

तो मैटिनी शो में आज हम बात कर रही हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। थ्री इडियट्स फिल्म भारतीय हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मील का पत्थर माने जाने वाली फिल्म है और ये फिल्म शिक्षा प्रणाली की कमियों और सामाजिक दबाव, जिस पर मैंने अभी बात कही थी आपसे, उस पर एक तीखा व्यंग्य

0: जो दर्शकों को अपने जुनून को चुनने की एक सलाह देता है, संदेश देता है, और जीवन को सरलता से जीने का भी संदेश देती है ये फिल्म। क्योंकि जिंदगी में हम आज इतने तनावग्रस्त हैं, हमारे बच्चे जो कैरियर चुनना चाहते हैं अच्छा मनपसंद, लेकिन इतना बोझ है शिक्षा का कि वे समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। तो ये फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ रटने वाली विद्या पर बढ़ावा देती है, यानी नवाचार, जो कहा जाता है कि नवाचार कीजिए, उस पर इतना नहीं जोर देती है जितना कि रटने जैसी विद्या पर, ताकि बच्चे किसी पोस्ट पर जब जाते भी हैं, किसी कैरियर को चुनते भी हैं, तो कई बार उनका पढ़ावा कहीं काम ही नहीं आता है। तो ये फिल्म ये भी दर्शाती है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों पर कैरियर का विकल्प थोपे नहीं कि आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, यानी आपको काबिल बनना है, कामयाबी की राह पर चलना है, और इसके लिए आपको अपने सपने देखने हैं, अपने सपनों के पीछे भागना है। ये फिल्म साफ संदेश देती है कि काबिल बनो और कामयाबी तो आपके पीछे झक मार कर आएगी, बस तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है।
1: जाने नहीं।
0: और मेहनत भी ऐसी जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी कल्पना में हैं।

जी, तो आप सभी ने फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इंसानी जीवन का संघर्ष है उसकी एक शानदार कहानी है। और ये फिल्म दर्शाती है कि हमें अपने अस्तित्व के लिए बचपन से ये लड़ाई लड़नी शुरू करनी होती है, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने माता पिता की आशाओं से भरी निगाहों को देखता है, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने या कोई बड़ा अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन करे। माता पिता इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी अपेक्षाएँ वास्तव में उनके बच्चों को लाभ पहुँचा रही हैं या उनके मानसिक दबाव को बढ़ा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, बल्कि या ऐसा कि उनका कोई निजी स्वार्थ होता हो, लेकिन हाँ, माता पिता भी कई बार ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों पर जब बोझ लाद देते हैं तो फिर एक अलग कहानी पैदा हो जाती है। माता पिता की अपेक्षाओं का दबाव और बच्चे को और ज़्यादा गंभीर बना देता है, तनावग्रस्त बना देता है और अपनी ज़िंदगी में जो बचपन की दुनिया है उसे भूलकर एक मानसिक दबाव की ज़िंदगी जीने लगता है। तो ये फिल्म एक ऐसे पिता की कहानी बताती है जो अपने बेटे को, जिसे वन्य जीव फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इंजीनियरिंग करने के लिए मजबूर करने की अपनी गलती को अंततः स्वीकार करता है और उसे अपने दिल की बात मानने की अनुमति देता है, जो कि हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे से बात करें और पूछे कि आखिर उनका बच्चा क्या बनना चाहता है और उस दिशा में क्या वो सच में मेहनत करेगा या खाली ख्वाब देख रहा है या सपने देख रहा है। ये बातचीत करने की आज परिवार में बेहद ज़रूरत है, ना कि अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को बच्चों पर लादने की। फिल्म थ्री इडियट्स यही कहती है संदेश।

ये आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की, और आप सभी ने अगर ये फिल्म देखी है तो निश्चित रूप से आप इस फिल्म को पसंद किया होगा। और इस फिल्म में शायद पहली बार शहरी कॉलेज जाने वाले छात्रों को एक सही रूप से बोलते हुए या कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही बड़े रूप में, एक अलग रूप में कॉलेज का दृश्य दिखाई देता है जो आम कॉलेजों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस फिल्म में वैसा ही दृश्य दिखाया गया है जैसा फिल्मों में हमारे जीवन में भी वैसा ही दृश्य हमें कॉलेज का मिलता है। और दोस्ती की एक दिल को छू लेने वाली और दिल को उत्साहित कर देने वाली कहानी है, और जहां इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। और हमें लगता है कि इस तरह की फिल्में अगर बनाई जाए तो निश्चित रूप से ये फिल्में हमें कुछ सीखने को तो देगी ही, और आम लोगों से भी फिल्मों का कनेक्शन जुड़ेगा। क्योंकि थ्री इडियट्स जैसी फिल्में जब बनती हैं जहां पर किसी विषय को, किसी मजबूरी को, किसी सपने को, किसी सच्चाई को उठाया जाता है, तो वो आम लोगों से कनेक्ट करती है फिल्म, ऐसा माना गया है। ये है थ्री इडियट्स फिल्म का आखिरी गीत, शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे की रचना, शांतनु मोइत्रा का संगीत।

मैटिनी शो में अभी आप सुन रहे थे फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमने राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे गीतों को शामिल किया है। आज उनका जन्मदिन है, तो आइए सुनते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में गीतकार राजेंद्र कृष्ण की रचनाएं।

चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में ये था राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। आवाजें गीता दत्त और उषा मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था माँ बाप।

सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में हम आपको राजेंद्र कृष्ण की लिखी गीत रचना सुनवा रहे हैं। युगल स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम है अमरदीप।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और सी रामचंद्र का गाया हुआ फिल्म का नाम है आजाद। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत सी रामचंद्र यानी चितलकर का।

कार्यक्रम में आप सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम गोपी।

0: देखो तो सिवाय चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म ब्लैकमेल में।

कार्यक्रम का अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण तो है ही, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है मन मौजी।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजें फिल्म शहनाई के लिए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म शारदा से आपके लिए चुना है। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, राजेंद्र कृष्ण के बोल तुम्हें।

0: लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज थी फिल्म शारदा के लिए।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने गीतकार राजेंद्र कृष्ण को याद किया।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे हैं और हमारे कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं और आपकी टिप्पणियां आपके संदेश पढ़कर हमें पता लगा कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे कि क्या बात है, आज सुरीला सफर में हम सफर करेंगे कि नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये कार्यक्रम आपका अपना है और हम हर दिन आपके साथ यूं कहें कि आप हमारे साथ सफर करते रहेंगे। हाँ थोड़ा कभी कभी आगे कभी कभी पीछे हम हो सकते हैं, होना नहीं चाहिए पर ऐसा कभी कभी हो जाता है। तभी तो जब ऐसा होता है यानी कभी समय ज्यादा हो जाता है कभी समय से पहले कुछ हो जाता है तो हमारा ये मन व्यथित हो जाता है और आज इसीलिए हमने कुछ ऐसे गीत चुने हैं जो आपके मन को प्रभावित जरूर करेंगे। और हमने हमारी इबारत बहुत छोटी रखी, कई श्रोताओं ने लिखा है कि अरे इतनी छोटी इबारत, जब हम बहुत बड़ी इबारत रखते हैं तो आप कहते हैं माशाल्लाह कितनी बड़ी इबारत रखी है, तो ऐसा नहीं है। जब मन में जो विचार आते हैं जिस गीत को लेकर या आज इस कार्यक्रम को लेकर, हम वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे अच्छा तो आप लिख देते हैं जनाब, जिसे हम पढ़ते हैं आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो आज हमारी छोटी सी इबारत है कि कभी कभी मन का रेगिस्तान सूख जाता है, या यूं कहें कि कभी कभी मन जो है रेगिस्तान सा हो जाता है, मन प्यासा हो जाता है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई, आप हम, किसी न किसी चीज का प्यासा है ना। उदास मन को बस एक अदृश्य मीठी सी बूंद की तलाश होती है। अगर आज या यूं कहें कि आपका मन जब भी उदास हो तो रुकिए, खुद को कोसिए मत, कोसना बंद कीजिए, आसमान की ओर देखिए, सूरज खुद जलकर औरों को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है, बस यही जीवन दर्शन है। इसलिए इस जीवन दर्शन को लेकर आज हमने इबारत रची, तो छोटी सी इबारत थी क्योंकि जब दर्शन की बात हो गई तो क्या कहना चाहिए, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात है ना। तो आपने मन के बारे में सूरज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हाँ हमने आपको लिखा था कि इस इबारत में आज के चुनिंदा गीतों से संबंधित कोई शब्द नहीं रखे गए हैं, जिसे लेकर आप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि भाई इस शब्द पर तो बहुत सारे गीत हैं। आज हमने आपको इतना बड़ा क्लू दे दिया और उसको जानकर आपने देखिए कितने कम समय में कितने सारे गीत चुन लिए हैं जो हमारी पसंद के गीतों से मेल खा रहे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में 8 से 10 जून तक आयोजित होने वाले भारतीय क्षेत्र के उत्तरी जोन 2 के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कल विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन से संबंधित व्यवस्थाओं, प्रतिनिधियों के आगमन तथा विभिन्न प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। हरियाणा विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद तथा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के सलाहकार राम नारायण यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के संदेश को सभी विधानमंडलों तक पहुंचाया। इस दौरान लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार तथा राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में अलग अलग राज्यों की विधानसभा के प्रधान सचिव, सचिव व वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के आगमन, आवास, यातायात, प्रोटोकॉल, सुरक्षा तथा कार्यक्रम स्थलों पर की जा रही व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रतिनिधि मंडलों की सुविधा और तालमेल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण और महिला छात्रावास का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया। इसके साथ ही सभी गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों व आम नागरिकों ने भी लगभग 101 पौधे रोपित किए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 करोड़ रूपये की लागत से विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र कम बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया और करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला महिला छात्रावास का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयुष यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के वजीफे में जल्द वृद्धि करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय का गीत जारी किया। विश्वविद्यालय की रिसर्च जनरल पीएचडी शोध कार्य से संबंधित शोध गंगा पोर्टल सहित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। जींद स्थित चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर रामपाल सैनी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पत्रकारों से विशेष बातचीत में प्रोफेसर रामपाल सैनी ने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कहा,
2: ये बहुत ही अहम जिम्मेदारी मुझे चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की दी है। उन्होंने जो विश्वास मेरे में व्यक्त किया है उस विश्वास पे खरा उतरूंगा और इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुलंदियों पर लेके जाऊंगा। रिसर्च में और शोध में और नवाचार में, स्किल डेवलपमेंट में इस विश्वविद्यालय का नाम होगा। आने वाले विद्यार्थी यहाँ से मैक्सिमम प्लेसमेंट लेके जाए, ये मेरा उद्देश्य है।
1: एम झज्जर उप नहर के पुनर्निर्माण कार्य को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि किसानों, ग्रामीणों और नहर विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार संवाद एवं सकारात्मक पहल के परिणाम स्वरूप सभी पक्षों के बीच महत्वपूर्ण सहमति बनी है, जिससे अब दोनों नहरों के पुनर्निर्माण कार्य को दोबारा गति मिलेगी। श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा करते हुए सिंचाई ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास कार्य की सफलता तभी संभव है जब उसमें स्थानीय लोगों की भावनाओं, सुझावों और आवश्यकताओं का सम्मान किया जाए। इसी सोच के तहत किसानों की चिंताओं को गंभीरता से सुना गया और सभी पक्षों को साथ लेकर समाधान का रास्ता निकाला गया। गौरतलब है कि भालौट एवं झज्जर सब ब्रांच से जुड़े अनेक गांवों के किसानों और ग्रामीणों ने नहर के तल को पूरी तरह सीमेंट कंक्रीट से पक्का किए जाने पर आपत्ति जताई थी। किसानों का कहना था कि ऐसा होने से भूजल पुनर्भरण प्रभावित हो सकता है तथा क्षेत्र के जल संतुलन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। किसानों की इन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नहर विभाग ने विभिन्न तकनीकी विकल्पों पर विचार विमर्श किया और लगातार संवाद की प्रक्रिया जारी रखी। फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पलवल में पहली बार साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल आयोजित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसी के साथ ही
0: हमारी श्रोता लिखती है कि कोई चीज खो जाए और न मिले तो मन कैसा उदास हो जाता है। मन का रेगिस्तान उसी पल सूख जाता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर ऐसा नहीं होता। इंसान नियति के आगे झुककर जीने को बाध्य है और जब हम जानते हैं कि हाल कैसा भी हो जीना तो पड़ेगा ही, तो क्यों नहीं जीवन थोड़ा हंसकर और थोड़ा भूल कर जिया जाए। जीवन को जितनी गंभीरता से लिया जाएगा उतनी ही पीड़ा होगी। इसे कुछ इस तरह से जियो कि यह उम्र एक सड़क है और हम सिर्फ चलने वाले हैं, हमें सिर्फ चलते जाना है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की इस आपाधापी में अक्सर मन का सागर उथला और शांत हो जाता है। उम्मीदों का किनारा छूटता सा लगता है और आत्मा एक सुकून भरी छांव की प्यासी हो जाती है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय जरा उस वृक्ष को देखिए जो खुद तेज धूप सहकर पथिकों को शीतल छाया देता है। यही इस नश्वर जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सार है, दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश को बांटना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात कही है कि अगर कोई ये पता लगा ले कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं उसे वैज्ञानिक कहूंगी। सब कहते हैं मन मेरा है, लेकिन मन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और ये किससे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मन की उत्पत्ति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे अस्तित्व में आया। मन को ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों के बीच कड़ी यानी मध्यस्थ माना गया है। अंतःकरण के चार भाग, अंतःकरण के चार अंगों में से मन एक है, शेष तीन बुद्धि, चित्त और अहंकार। कार्य मन का मुख्य स्वभाव है संकल्प विकल्प, चंचलता दुविधा और इच्छाएं पैदा करना। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मन के अंदर भी एक रेगिस्तान होता है, बाहर भले हरियाली हो लेकिन अंदर सूखी और गर्म रेत। मन का रेगिस्तान पानी नहीं मांगता, वो मांगता है बस इतना कि कोई उसे समझे बिना, जज किए बिना उस उदास मन को बस वो जो थक गया है मुस्कुराते उसे मुस्कुरा कर देखे। उदास मन के भीतर भी एक कोना होता है जहाँ उम्मीद की एक बेल जिसे सींचना पड़ता है, खुद से बात करके, खुद को समझ के और बेवजह खुद को ही गले लगाकर। आपने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है, जो इसमें से आपका एक गाना हमसे मिलता है, सूरज रे जलते रहना। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, शब्द रे। सोना रे

आशा भोसले मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। कितनी प्यारी इल्तजा कर रही है महबूबा अपने महबूब से, ओ मेरे सोनारे। जी तो आज के दो सवाल नोट कर लीजिए। वैसे तो आपने अपनी टिप्पणियों में बहुत सारे गीत लिखे हैं जो हमारी गीतों से मेल भी खा रहे हैं और उसके अलावा भी गीत लिखे गए हैं, तो वही हमारा सवाल है कि रे का ये प्रयोग किन किन गीतों में हुआ है, आप बताइए। जैसे ही आप बताएंगे हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से और मेल खा जाए और इसके अलावा कुछ अन्य गीत भी हमारी नजर में आ जाए। तो रे का प्रयोग यहाँ और फिल्मों में किन किन गीतों में किया गया है इसका उल्लेख आपको करना है, कम से कम 4 या 5 गीत। और दूसरा सवाल ये है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गीतकार जब लिखता है जैसे सोना रे सूरज रे, ये क्यों और कब। जैसे कि मैंने पहले कहा भी था, आप अपनी कल्पना से बताइए, अपने भावना से बताइए कि रे का ये काव्यात्मक रूप गीतकार कब कब गीतों में किस रूप में इस्तेमाल करता है। अगर वो कहता है सूरज रे चंदा रे मन रे, तो क्यों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा कम से कम शब्दों में।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आधुनिक अंधी दौड़ की मरीचिका का उल्लेख करते हुए जीवन के दर्शन को बयां कर रही है। अंततः इस मृत तृष्णा का सुखांत सूर्य की उपमा संग प्रदान कर सुखद उपसंहार में समापन किया गया है। विषय पूर्णतः तथ्यपूर्ण और दार्शनिक है। अभिनव गीत चयन भी प्रशंसनीय है। अल्पकालीन सूचना पर भी आशा है कि यह संक्षिप्त इबारत सफर की गरिमा बरकरार रखेगा। बिल्कुल, ये आप सभी श्रोताओं पर है। हो सकता है आज का ये सफर थोड़ा छोटा हो जाए, आप सभी लोग कम से कम टिप्पणियां कर पाए क्योंकि आपको वक्त कम मिला, लेकिन जितना भी मिला उसी में हम इस सफर का आनंद उठाएंगे, क्यों है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में जीवन में छाई उदासी या ग्लानी को एक तरस या प्यास की उपमा के साथ उभारने की कोशिश हुई और एक शब्द को खास कर प्रयोग में लाया गया है गीतों के जरिए, वो भी खास है रे, यानी मन वो उदास हो या धीर कैसे धरे या हो या सूरज जो जीवन की शक्ति के लिए अपने को जलाता रहे, यही जीवन की सच्चाई को उजागर करते हुए गाने होंगे। आपने भी कुछ गीतों का चयन किया है तो देखिएगा आपके गीत हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं या नहीं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी ये पंक्तियां जीवन के एक बहुत ही गहरे और कड़वे सच को बेहद खूबसूरती से बयां कर रही हैं। मंदाकिनी जी, भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते अंदर से पूरी तरह रीते और थकावा महसूस करते हैं। ये ठहराव जिसे हम प्यास या खालीपन समझ रहे हैं वास्तव में खुद को भीतर से सींचने और एक नई ऊर्जा के साथ खिलने का अवसर है। हमें किसी बड़े चमत्कार की नहीं बल्कि अपनेपन और सांत्वना की बस एक छोटी सी मीठी बूंद की तलाश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी मीठी बूंद की तलाश में हम पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। वो मिलती है कि नहीं ये हमारे अपने अपने सोच और कहना चाहिए अनुभव पर निर्भर करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने श्रोताओं के मन को रेगिस्तान बना दिया। पोस्ट लगभग सिर्फ 45 मिनट पहले आई है। मेरे ख्याल से सभी उत्सुकता से आपकी राह देख रहे थे कि कब सुरीला सफर की रेल आए, हम उसमें सवार हों, इबारत को देख अपनी जिज्ञासा की प्यास बुझाएं। तो अब तो आप रेल में सवार हो गए हैं ना, चलिए करते हैं यात्रा शुरू। और हो गई है यात्रा शुरू, देखिए रेल हमारी चल पड़ी है फटाफट। एक श्रोता लिखते हैं कि अपने मन की उदासी को कोसने के बजाय खुद पर हौसला रखें और उगते सूरज की तरह चारों तरफ प्रकाश फैलाएं, अर्थात परिश्रम करें, आगे बढ़ें। मन रे तू काहे न धीर धरे, आपने इस गीत का चयन किया है और वाकई हमारा अगला गीत यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बधाई जिन्होंने ये गीत पसंद किया है या अपनी पसंद में ये गीत शामिल किया है।

0: रोशन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। मोहम्मद रफी की आवाज थी और फिल्म का नाम था चित्रलेखा। कितना खूबसूरत गीत, गहरा और सुंदर। दार्शनिक प्रयोग यहाँ पर रे का, देखा आपने, रे का अर्थ यानी यहाँ मन या आत्मा से है। और यहाँ गीतकार जो साहिर लुधियानवी हैं, अंतरात्मा को एक दार्शनिक उपदेश दे रहे हैं। जो मन अशांत है उन्हें धैर्य रखने की सीख दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रे मन, तू धीरज क्यों नहीं धरता? इस जीवन की धूप छांव को किसने बांधा है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दे। रे मन, मन को समझा, अपने आप को समझा। कितना गहरा गीत, और इस गीत को सुनकर तो मन को शांति मिलती ही है। आपको भी निश्चित रूप से बहुत गहरी शांति मिली होगी। और आप मन को समझा सकते हैं इस गीत को सुनकर कि इधर उधर व्यर्थ की दौड़ भाग में कुछ नहीं रखा, मन को शांत और सौम्य रखा जाए, वही जीवन का सार है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप इस रेगिस्तानी सफर में गर्मी में आज सुरीले गानों से मन की प्यास बुझाएंगी, मन को शीतलता मिलेगी। बहुत सुंदर। वही गीत एक श्रोता लिखते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की, नमस्कार, क्या बात है, आज सुरीला सफर बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा पोस्ट के लिए। अरे आप तो फिर भी इस सफर में शामिल हो गए, और क्या चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती रे, मंदाकिनी बहन रे, आप ही बताओ आज की पोस्ट इतनी देरी से क्यों आई। वैसे रोज सुबह आ जाती है, मगर इतनी छोटी सी इबारत भी नहीं होती है। सुरीला सफर में जुड़ रहे सभी के संग आपको मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आप हमारे साथ हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप पानी की बूंदे लेकर आई हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी। बाकी तो जब प्रोग्राम चलेगा तब पता चल जाएगा कि कितनी ठंडक मिलेगी। मिली ठंडक आपको? वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सूरज हमें जीवन दर्शन भी सिखाता है। सूरज हर दिन बिना थके अपना काम करता है। ये सिखाता है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्तव्य से नहीं डिगना है, नहीं हटना है। रात कितनी भी लंबी हो और सवेरा जरूर आएगा। और इसी तरह हमारे जीवन में भी दुख के बाद सुख जरूर आता है। सूरज स्वयं जलकर भी संसार में प्रकाश बिखेर कर परोपकारी बनना सिखाता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत अनुरूप संभावित गाने, समय कम है इसलिए ज्यों ज्यों याद आएंगे जोड़ते जाएंगे। सूरज रे जलते रहना, फिल्म हरिश्चंद्र तारामती, मन रे तू काहे नधीर धरे, और आपने और भी गानों के बारे में लिखा है। तो हमारी जो आज की सवाल है, हमारा जो आज का सवाल है, उसमें हम आपके गीतों को शामिल करेंगे जो आपने रे के प्रयोग वाले गीत लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म नागमणि का गीत। इसे आवाज दी है प्रदीप ने। गीत को कवि प्रदीप ने ही लिखा है और धुन बनाई है अविनाश व्यास ने।
1: पिंजरे के पंछी
0: रे,

जी, तो सुना आपने कि कवि प्रदीप ने कितने दार्शनिक तरीके से ये बात कही है कि पिंजरे में बंद पक्षी और शरीर यानी दुनिया में फंसी मानव आत्मा की जो उन्होंने तुलना की है। आप देखिए कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी अपने पंखों के कटने और अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी आज़ादी छिन जाने का दर्द किसी को नहीं बता सकता, ठीक उसी तरह मानव शरीर में कैद आत्मा सांसारिक बंधनों और दुखों के कारण मौन रहकर भीतर ही भीतर तड़पती रहती है। तभी तो उन्होंने कहा, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। हमारे श्रोता लगातार अपनी बात कह रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रख रखे हैं और मुझे लगता है बहुत गहराई में चले गए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहीं उलझ गए हैं हम मंदाकिनी जी शब्द जाल में, जब आप होती हैं तो कुछ नया होता है, 1 बजे का बस इंतजार है, हम नहीं उलझेंगे। बिल्कुल मत उलझिए, बस आप हमारे साथ बिल्कुल आराम से सफर में रहिए और आरामदेह सफर का मजा लीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मन इतना सूख जाता है कि आंखों में आंसू होते हुए भी प्यास नहीं बुझती, भीड़ के शोर में चलते चलते अपनी ही आवाज कहीं खो जाती है, हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है पर भीतर कोई चुपचाप टूट रहा होता है, कोई रोटी का प्यासा है, कोई मोहब्बत का, कोई बस एक अपने का, मन ढूंढता एक मीठी सी बूंद जो माथे पर हाथ रखकर कह दे मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो, मगर अक्सर शाम ढल जाती है और वो बूंद नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। फिर नजर उठती है आसमान की ओर जहां सूरज रोज जलता है, अपने हिस्से की आग सहकर दुनिया को उजाला देता है, तब दिल रो पड़ता है कि शायद जीवन का अर्थ यही है, अपने दर्द को सीने में रखकर भी किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाना। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि सबसे ज्यादा रोशनी बांटते हैं जो, अक्सर उनकी तन्हाइयों का हाल कोई नहीं पूछता। क्या बात कह दी आपने, मेरी आंखें नम हो गई हैं, गला रुंध गया है। सचमुच यही होता है कि जो दूसरों की चिंता और फिक्र करता है उसके लिए आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो आपने कह दिया है। एक शोधा लिख रही है कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की पोस्ट 12 बजे के बाद आई है, रोज की तरह हम तो पोस्ट का सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पोस्ट 10 बजे के करीब आ जाती है, आज बहुत देर कर दी। वहीं एक शोधा लिखते हैं कि आज सुरीला सफर के अंदर दर्द भरे उदासी के सॉन्ग शायद सुनने को मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं, आज हम कुछ दर्शन पर बात कर रहे हैं, जिंदगी का दर्शन जिसे आप भी पसंद करते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूर्य केवल आकाशीय पिंड नहीं है बल्कि अनंत ऊर्जा, प्रकाश, जीवन और त्याग का सकारात्मक प्रतीक है। सूर्य निरंतर गतिमान और कर्मशील है, इसे आलस्य त्याग कर निरंतर कर्म करने और ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। ये निराशा के काले बादलों को चीर कर रोशनी और प्रकाश रूपी किरणों को विस्तारित कर आशा का संचार कर देता है। जी बिल्कुल, आशा का संचार तो आपने भी कर दिया है, इतने कम समय में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर सफर में हमारे साथ हैं, और क्या चाहिए। आपका ये जो है ना मैं हूं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, दवा का। और जब हमारे श्रोता हमारे साथ हैं तो रे का प्रयोग भी तो श्रोता रे बने रहना है ना। चलिए तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए फटाफट कि रे का प्रयोग और किन किन गीतों में हुआ है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, हम पढ़ेंगे जल्द ही। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, आप क्या सोचते हैं गीतकार कब रे का प्रयोग करता है, जैसे मैंने कहा श्रोता रे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कितना गहरा और दर्द भरा गीत था। जब हम किसी को पुकारते हैं और कोई नहीं आता तो जी जान से हम पुकार लगा देते हैं, आ जा रे आ जा रे आ जा रे, है ना। बस यही है रे का प्रयोग जो आपको बताना है कि गीतकार ने किन किन अर्थों में किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में किसी भी शब्द का चयन नहीं करना है क्योंकि रे जैसे संबोधन परक शब्दों से ही संबंधित गीत बजाए जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान तो अपने आप में ही सूखा होता है और इसीलिए उसे मरुस्थल कहा जाता है। ऐसे में सहारा का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाकों का नाम सुना है, किंतु मन का रेगिस्तान प्यासा हो तो संभव है, लेकिन एक तो रेगिस्तान वैसे ही सूखा, दूसरे सूखे में और सूखा। बात कुछ समझ में नहीं आई भाई, जहां सूखा होता है वहां भूख प्यास के लिए धरती ही नहीं, अभी तो हर जीव ही एक बूंद के लिए तरसते हैं। लेकिन अब भी ये तो कहावत प्रचलित है कि जहां कोई नहीं वहां रेड़ का ही पेड़ प्रधान हो जाया करता है। फिर भी क्या बात है, बहुत गहरे में चले गए आप तो। देखिए, हम जब हमारा मन रेगिस्तान हो जाता है यानी सूखा हो जाता है तो हम मिठास को तरसते हैं, एक बूंद मिल जाए, प्यार की एक बूंद, पानी की एक बूंद जिसे हम कह सकते हैं, और वो बूंद हमें सुरीला सफर में मिल रही है ना। हम भले ही हमारा मन रेगिस्तान है लेकिन आपके प्यार की बूंद, या यूं कहे कि हमारी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है वो बूंद काफी नहीं है क्या हमारे जीने के लिए, सोचिएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अरे आना तो था ही, आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पोस्ट है आपकी, और एक श्रोता लिखते हैं कि विशेष रूप से ये कहना है मुझे कि कल शाम को 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आपने बहुत मस्त गीत सुनवाई। अच्छा, कल आप सुन रही थी, बहुत आभार और शुक्रिया आप सबकी अथक मेहनत को सलाम। बहुत शुक्रिया आपको भी कि आप भी तन मन धन लगाकर हमें सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज छोटी सी इबारत और अच्छा अंदाज आपने दे दिया रे शब्द के गाने, अब ये सोचने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े शायद, पर आप हैं तो हम लोग तुक्का लगाना बेकार ही मानेंगे। आप कहां कहां से अनसुने गाने खोज खोज के लाती हैं, हम लोग अवाक रह जाते हैं। आपको पसंद है यही हमारे लिए काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम तो दिलचस्प पहेली जैसा लग रहा है। आपके संकेत के अनुसार आज के सभी गीतों में रे शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी गीतों में रे बहुत ही आम है, इसलिए कई संभावनाएं हो सकती हैं। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, मन रे तू काहे न पिए, धीर धरे, ओरे पिया, रे कबीरा, नैना रे, सजन रे, चलत मुसाफिर मुहलिया रे। क्या बात है, बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपकी इबारत का मुख्य संदेश गीतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मन उदास हो, जीवन में आशा की छोटी सी किरण तलाशनी हो, सूरज का उदाहरण देकर आपने ही बताया कि जीवन का सार संघर्ष के बावजूद प्रकाश बांटना है। बिल्कुल, आप लोगों के विचार लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय का ध्यान भी हमें रखना होता है। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं, मन का रेगिस्तान भी एक दिन खिल जाएगा, सब्र की बारिश से हर जख्म सिल जाएगा, तू खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, तेरे भीतर का सूरज भी एक दिन मिल जाएगा। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पीतल की मोरी गागरी, दिल्ली से मोल मंगाई रे, दो बूंद पानी का। अच्छा, इस गीत में रेगिस्तान है, पानी के लिए कश्मकश भी है, प्यास भी है, और रे शब्द भी आ रहा है, तो पूर्ण रूप से ये गीत शामिल होना चाहिए। आपकी लिस्ट में गीत शामिल हो गया है, और क्या चाहिए। देखिए ना, आप कितना गहरा उतर कर इस गीत को उठा लाए हैं कहीं से। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़े समय के लिए मन उदास हो गया था क्योंकि रोजाना सुहाना सफर की, सुरीला सफर की पोस्ट 8 से 10 घंटे पहले आ जाती है। आज 12 बजे के बाद सुहाना सफर की पोस्ट आई, जो पढ़कर मन प्रफुल्लित तो हो गया। मेरा मन अगर उदास हो जाता है तो मैं हमारे घर से नजदीक लाखोटा तालाब के पार्क में खुली हवा में टहलने चला जाता हूँ। वहाँ रेडियो बजता रहता है, FM रेडियो बजता रहता है, और मैं मधुर गाने सुनता हूँ, मन को शांति मिलती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है।

वाणिज्य राम को आपने सुना, फिल्म का नाम था गुड्डी और गुलजार साहब के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी आवाज में एक खनक है, आप मुस्कुराते हुए गीतों को लेकर आती हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज की इबारत कुछ अलग सी बड़ी प्यारी लग रही है, बस हम थोड़े बिजी हैं पर आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल रहिएगा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट के इंतजार का मन प्यासा बन गया था, मानो दिल का रेगिस्तान बन गया था, अब पोस्ट आ गई है तो आपने कुछ गाने लिखे हैं जो हमने पूछे थे। मन रे बिल्कुल बूझ मेरा क्या नाव रे, क्या बात है, मेघा रे बदरा छाए रे, खाई है रे हमने कसम, जा जा रे वाह और बोले रे पपीहरा, तो आपकी पसंद हमसे मिल गई है। आजा रे प्यार पुकारे, ये अगला गीत अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही था, दिल पुकारे आरे आरे, ओ माझी रे पंछी रे क्या बात है, ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, ऐसे करके सखीरी सुन बोले पपिया उस पार। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत शानदार आपने गीत मालिका तैयार की है जो रे पर आधारित है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे मन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आपने लिखा है कि बहुत सारे गाने हैं जो रे पर आधारित है। मेरे मन से जुड़ा टॉपिक है, आज तो रेगिस्तान कभी मन हो जाता है लेकिन जीना है तो हंस के जीना है, इसी फंडे पर मैं हमेशा जीती हूँ चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए और मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मन रे तू काहे ना धीर धीरे, ये गाना आपकी लिस्ट में है, बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह आज के कार्यक्रम का शीर्षक ही दिल को छू गया है, जहाँ आपने रे का संबोधन वाले गीत चुने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज चंदा रे कभी तो जमी पे आ बैठेंगे बात करेंगे, बिल्कुल आपने ए हरिहरन की आवाज में गीत पसंद किया है, नई फिल्म से गीत है, बहुत सुंदर गीत आपने चुना है चंदा रे चंदा रे। वही एक श्रोता लिखते हैं ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया करे धरा, अच्छा ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, चंदा रे दिल से रे दिल से रे, बिल्कुल सही आपका चुनाव भी बहुत सही है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, चंदा रे मेरी मोरी पतियां ले जा, वाह जा जा रे जा बालम वा, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, जरा सा झूम लू मैं ना रे बाबा ना, क्या बात है, बहुत नया गाना आपने चुना है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैम आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, अरे वाह आपको दिख रही हूँ मैं हंसते हुए शुक्रिया मेहरबानी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ओ मेरे सोना रे ये गाना तो मेरी लिस्ट में नहीं था, क्यों भाई क्यों नहीं था, ये गाना तो बहुत ही पॉपुलर है और सभी को पसंद आता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी लिस्ट में जो गाने थे वो तो लिखिए जनाब। एक श्रोता लिखते हैं माई री चंदा रे आओ रे ओरे पिया, ये गाने नदिया चले चले रे धारा, रात का समा झूमे चंद्रमा मन मेरा नाचे रे, वाह क्या बात है, कहाँ पकड़ा है आपने रे को, बहुत सुंदर। और वहीं और भी श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है, रे मन सुर में गा ओरे ताल मिले नदी के जल में, यह तो हमने भी गीत चुना था फिर हमने इसे हटाया, पिया तो से नैना लागे रे क्या बात है, रे मा तेरे मेरे नैना सावन भादो। और वहीं आप लिखते हैं तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के रे, अच्छा इसमें भी आप सुन रहे हैं, और यानी आज आपने रे जिनमें रे है और मन की प्यास उदासी उम्मीद की बात है, मंदाकिनी जी आज आपने वो गाने सुनकर हमें बहुत आनंदित किया है, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। अब आपने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, और भी बहुत सारे श्रोता अपनी पसंद के गीत लिख रहे हैं जहां रे का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब किन किन गीतों में इस्तेमाल किया गया है। गीतों का नाम तो आपने लिख दिया है लेकिन कब इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका छोटा सा बताइए ना बात। अगला गीत हमने चुना है सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में, शैलेंद्र का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है पूनम की रात। साथी रे सुनिए आप। साथी रे ये रे हमारी जान ले लेता है ना,

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपको हार्दिक नमस्कार और अक्षर रे का जो आज स्पेशल प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार लग रहा है। आपने फिल्म आ का गीत आजा रे अब मेरा दिल पुकारा रो रो के गम भी हारा ही गीत पसंद किया है और लिखा है कि इसमें रे का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, ये गाना भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नया गाना है। आप एक श्रोता हमारे सवाल का जवाब देते हैं दूसरे सवाल का कि रे शब्द का काव्यात्मक आविष्करण खुशी उदासी आशा निराशा चैतन्य वैराग्य अभिमान प्यार स्नेह के अनुभव में अपने आप बखूबी हो जाता है गीतों के माध्यम से गीतकारों के माध्यम से, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेघारे मेघारे ये गाना आ जाए तो इतनी गर्मी में थोड़ी ठंडक मिल जाए। हाँ, आज तो आपको ये गाना नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है अगले किसी और कार्यक्रम में हम आपके लिए गाना लेकर आए। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब कोई गीतकार किसी अमूर्त भावना जैसे कि मन है सूरज है चांद है को व्यक्ति के रूप में अपने खास प्रेमी के रूप में महबूब के रूप में अपनेपन के रूप में देखता है तब वो रे लगाकर उसे संबोधित करता है ताकि वो जो बात वो जो प्रार्थना वो जो इल्तजा वो जो प्रेम की बौछार वो जो भी संदेश देना चाहता है वो रे के माध्यम से और मजबूत रूप से उस व्यक्ति तक उस इंसान तक पहुंच जाता है। जैसे सूरज रे जलते रहना है ना रे का प्रयोग। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा हुआ, जसपाल सिंह की आवाज, फिल्म का नाम श्याम तेरे कितने नाम।

0: मन से मन का बंधन सच्चा, मन से मन का बंधन सच्चा, बाकी बंधन झूठे कभी अपना साथ न छूटे।
1: जी हाँ, कभी अपना साथ न छूटे। प्यारे श्रोताओं रे, बने रहना इस सुरीले सफर में हमारे साथ, कभी अपना साथ न छूटे। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है इस सफर को और लंबा करने का, तो बस यही थम जाते हैं इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर से। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।

0: अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज विथ एन एनुअल आउटपुट ऑफ ओवर 26 मिलियन मेट्रिक टन्स एंड मोर देन 1000 नेम्ड वैरायटीज। चिराग झा, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
2: Mohsen Rezae, the military advisor to Iran's supreme leader Mujtaba Khamenei, has called on US President Donald Trump to make decisions independently of Israel, stop the blockade in the Strait of Hormuz, and release Iran's frozen assets. In an interview with the television channel, Rezae said that the negotiations between the two sides are at a deadlock and Mr. Trump must break this deadlock. He further said that if the US wants to reach an agreement with Iran, the release of frozen Iranian assets is a test that America must pass and the path will be opened. Mauritius has imposed a temporary entry ban on foreign nationals who have travelled to, transited through or stayed in Congo, Uganda or South Sudan over the past 21 days following the latest outbreak of the Ebola virus. Mauritian citizens and foreign residents holding valid work, residence, occupation, business or student permits will still be allowed to enter the country but will be subject to a mandatory 21-day quarantine if they have visited any of the three countries within the previous 3 weeks. India Meteorological Department or IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. Very heavy to heavy rainfall conditions are also expected over parts of northeast India, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. The weather agency predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East UP, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. The Met Department further said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, remaining parts of Goa, Tamil Nadu, southwest Bay of Bengal and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather has remained clear across most parts of Himachal Pradesh today, bringing relief to people. After the recent spell of hot weather, the pleasant change in weather has significantly eased daily life. A report.
3: In Himachal Pradesh, light snowfall was recorded yesterday at Rohtang and Kunjam passes in the tribal district of Lahaul Spiti, while some areas also witnessed light rainfall. This change has made the weather pleasant, attracting a large number of tourists to various destinations across the state to enjoy the scenic conditions. Meanwhile, the Meteorological Department has issued a yellow alert for today for the districts of Chamba, Kangra and Kullu, warning of possible thunderstorms, hailstorms, rainfall and lightning. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
2: The Board of Control for Cricket in India, BCCI, today announced Team India's 16-member T20 international squad for the tours of England and Ireland. Shreyas Iyer has been appointed as India's new T20I captain, replacing Surya Kumar Yadav. Moreover, Tilak Verma has been named as vice-captain. BCCI has also included young sensation Vaibhav Suryavanshi in the squad for the first time, following his great IPL 2026 season scoring highest runs. Prince Yadav has also been added to the squad. The team was announced after a meeting of Team India's Men's Selection Committee, led by Chief Selector Ajit Agarkar and BCCI Secretary Devajit Sekhia, for deciding the squad for the tours of Ireland and England and the Asian Games in Japan, as well as India A's tour of Sri Lanka, multi-day games, at the BCCI headquarters in Mumbai today. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon, Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. Earlier, India secured its place in the final by defeating Bhutan 1-0 in the semi-finals. India has won this title 5 times so far. In hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Kakamigahara in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20 I captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है
5: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है एक रिपोर्ट
6: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता नवाचार बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी
4: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
7: With Nepal, we have an expansive agenda.
8: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
7: Partnership that we have with Nepal.
4: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
9: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
4: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
10: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
11: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
4: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। भारत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
4: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है बारिश।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चंगेज खां, आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल कमर जलालाबादी ने लिखे हैं और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400।

0: 0091 आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे। दिल उनको दे आए।
2: ये आवाज है आशा भोंसले की और फिल्म का नाम है मेरा सलाम। शिवान रिज्वी की रचना है और हाफिज खान का संगीत।

किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना, माशा अल्लाह कहना

0: तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: और आइए अब सुनते हैं दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की युगल स्वर। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 911।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हिल स्टेशन, गायिका हैं लता मंगेशकर, बोल हैं SH बिहारी के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है मन चाहे गीत।

0: बन जाएगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।

0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने का। और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत SD बर्मन का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने और दत्तरेंगी भाटापारा से ये हैं हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दो गाना।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा खातून लखाणी, विहान लखाणी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकते और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाह। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज़ सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: नाचो।
2: नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना होगा।
2: खुदा के लिए
1: कोई रहम नहीं, नाचो।
2: नहीं, नहीं, नहीं। इन मुगल शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता है कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूँ नाचो। गुलाम, इनके कोड़े लगाओ और भरे दरबार में नचाओ।
3: ये गुलाम कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर कितना जुल्म है।
4: हाँ।
3: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ है ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी। आलम पना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब की चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंसी जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
2: आलम पना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साये में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियायत तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कारने
1: का कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमी बोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
2: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
1: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात वे ताकत का सही अंदाजा हो

0: सके और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई।
1: जी हाँ आलम परवर, अब की बार पूरी तैयारी के साथ इन लोगों को शिकस्त फाश देनी चाहिए।
0: इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं हम।
1: जी हाँ जहां पना, हमारे जासूस बराबर ऐसी खबरें ला रहे हैं।
0: नवाब शुजा के पास मीर कासिम ने खत भी भेजा है कि शायद उसे जल्द ही बंगाल छोड़ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज कंपनी उसे हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
1: जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपाह भी हमारे साथ हो लेगी।
0: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर।
1: जी आलम पना।
0: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
1: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
0: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कम से न अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
1: जो हुक्म आली जा।
2: तस्लीम।
0: तस्लीमात तस्लीमात, क्या नाम है तुम्हारा?
2: मेरा नाम एमिली है योर मैजिस्टी।
0: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम? योर
2: जी योर मैजिस्टी।
0: हाँ हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
2: आलम पनाह। आलम पनाह।
0: बिल्कुल ठीक, तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
2: जी जी हाँ, जान पाना, यहाँ बचपन से रही हूँ। तो आलम पनाह, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
0: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
2: ओ, हमारा अच्छा किस्मत है, हमने भी आलम पनाह को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल हैं। हम यहाँ आपकी आपकी पनाह में रहने चाहता है।
0: ठीक है एमली, तुम यहाँ रह सकती हो।
2: ओह थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
0: तुम्हें हमारे हरम में सब बेगमों के साथ रहना पड़ेगा, बाहर जाओगी तो पर्दे में जाना होगा।
2: नो, नहीं नहीं, हम पर्दे में नहीं रह सकते, हम तो आजाद घूमने चाहते, हमारे कोई पर्दा नहीं करता।
0: तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो, यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो।
2: ओ जय पाना, आप कितनी अच्छा है, कितना खूबसूरत है आप।
0: हाँ हमें भी तुम अच्छी लगती हो, तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
2: ओ शुक्रिया आलम पना, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
0: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
3: जी हाँ जहां पना, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पट सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
0: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
3: जी हाँ आलम पना, अंग्रेज तो बंगाल बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
0: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं, लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
3: जी हां जहांपना, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
0: नवाब
3: जहां पना,

0: जी हाँ आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
1: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
0: जी हां आलमपना, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपें।
1: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
0: जी अली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिल तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
1: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
0: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
1: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन 7 अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
0: बेशक आलमपना, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन 7 अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहांपना, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
1: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
0: अली कद्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
1: तुम्हारा मतलब एमली से है, क्या हुआ?
0: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
1: और अब क्या हुआ उसको?
0: हुजूर आला, पिछले 1 माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली है। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान, हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
1: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
0: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
1: ये तो बहुत संगीन मामला है।
0: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं, उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
1: इस वक्त वो कहां है?
0: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
1: उफ नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
0: आलमपना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
1: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले, आलमपना को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कूच भी कर चुके थे।
1: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
0: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
1: कौन? सकीना बेगम? यहां फौरन भेजो।
2: जी जहां

0: आलम बना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
1: हाँ हाँ बोलो बेगम, यहाँ क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
0: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
1: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
0: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
1: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
0: जी नहीं आलम पना।
1: ओ, वो कमीनी कहाँ है?
0: जी बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
1: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
2: जहां पना ने याद फरमाया।
1: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदसात को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस हराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ, बराबर के खेमे में है वो बदसात?
2: जी आलीजा, हुक्म की तामील होगी।
1: बेगम तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
0: जी नहीं आलम पना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
1: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
0: जैसी आलम पना की मर्जी।
2: आलम पना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फहरिश्ते मेजर मुंडो को भेज चुकी है। कोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर।
1: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो। शुजा, ये हाँ। ये क्या है?
2: ओह जहां पना, ये तो अंग्रेजों की तोपें हैं। पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
1: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
2: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है, धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
1: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खान, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्तफाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूर वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: चैपना का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेजिया की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन, शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बाइस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, कुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बार करके दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहनशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मैजेस्टी की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खां को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आली कदर, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहां पहुंचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना ये मौजा धनौली है, यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर जरा पता लगाओ।
0: आलम पना ये आली जा वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमें हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलम पना सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें भर आईं।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियां। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, ए लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों हैं आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। हाँ। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी आठ भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 20-20 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता। हाँ। और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन वैसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी। हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो
0: था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस के वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे, फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला कहते थे, आजा बुला बुला इसको, बुला उसको बुला, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूं कि आज टेरेंस आए, अभी टेरेंस नाचेंगे तो नहीं, लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूं, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। हम चार भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्हें कहा कि अच्छा बच्चे लोग कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो यू नो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश यू नो एनवायरनमेंट में पला पड़ा। यू नो बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके। आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग सिंगिंग एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा। तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, यू नो जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने यू नो सर्टिफिकेट्स सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे इतनी चीजें याद है आपको बचपन हाँ। की तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए भी गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बॉनी एम, ओके,
1: बॉनी एम का, ओके,
0: बॉनी एम 1975 हाँ। में तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाया था, जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक यू नो हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन,
0: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो फिर अजीब दास्तां है, हाँ। अजीब दास, मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सब उनको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो यू नो वो लफ्ज जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं क्या नहीं। तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
1: याद भी हो जाते थे,
0: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यारा लगता है। तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेन नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन में।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है,
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ।
0: लेकिन हमारे
1: लिए कुछ तो... भी मैंने कोई भी चीज

0: जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं, मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
1: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है,
0: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
1: हाँ।
0: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था, तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो जिद्दी भी था, तो और रिजल्ट भी लेकर आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर बोला अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
0: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई। तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप, तो वो डर जो होता है ना
1: वो निकल जाता है।
0: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया, तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होगा, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया। तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, लिए अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं

0: करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने, उसकी दो तीन बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी, उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया। बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
1: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
0: होगी? 17 साल की थी।
1: उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं?
0: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन दे रहा था, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया था।
1: वाह वाह वाह।
0: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे। तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था, तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे, उन्होंने कहा आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
1: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
0: अच्छा।
1: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है, और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे, लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे यार? सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
0: एग्जैक्टली। क्योंकि देखो, मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैं साइंस, मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था। फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए। फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया, और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया, पैसे अच्छे रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया, और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने।
1: ओह।
0: मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई, मैं, हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था, और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुमने, तुम अभी डांसर बन रहे हो, तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी, क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक, मतलब इधर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ, तो उन्होंने सब ने ना कर दी। मैंने बोला कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग, मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों दूसरे आएंगे? ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
1: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी,
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: देखिए, एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
0: करेक्ट।
1: वो हर चीज से डरता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए,
0: हाँ,
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा होगा।
0: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन लोग सपोर्ट मिलता है। हाँ। लेकिन हमारे, मेरे डैडी तो मजदूर हैं। उनको सिर्फ, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए, वो
1: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
0: खुश हो
1: तो खुशी मिल गई।
0: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
1: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में, बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी, मतलब

0: 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
1: लेकिन और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता,
0: नहीं होता। तो वो अकल बाद में फिर जो जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखेंगे कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो। तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में
1: जरूर,
0: लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे?
1: मेरे
0: किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां आप भी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन
1: और मुझे, सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा कहना, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़,
1: कई बार
0: लटक जाऊं।
1: I'm telling you, मैं सच कह रहा हूं कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूं। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक
1: है।
0: मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं, तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते,
1: नहीं सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा, ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।

0: तो ये गीत तो हमने सुन लिया।
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती हैं उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी हैं।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, देखते क्या है, तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मैं मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है। तो कभी वो लत या लगाव लगाई।

0: तुम्हारे लगा दे।
1: अच्छा टेरेंस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा। फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं। आज भी हैं।
2: शुक्रिया।
1: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
2: देखिए, आज के तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
1: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
2: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
1: अच्छा।
2: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
1: हाँ।
2: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊँ, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊँगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो हैं वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के वगे ही। तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है। मैंने
1: फिर आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
2: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में यू नो सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, यू नो स्कूल कॉलेज फंक्शन।

0: सब यू नो दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज़ करने के लिए, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूँ भी तो उनके साथ काम करूँ, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्म भी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, एक छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की। तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है, वो कोरियोग्राफ करके दिखाए।
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस
0: अंग्रेज
1: करती
0: लड़की
1: है
0: नाचती है
1: वो वाला डांस
0: सेक्शन, हाँ वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको
0: इसको तो रीना मेरी यू नो वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये यू नो प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो ये तो तुम करते हो तुम्हारे मतलब यू नो पार्टीज में से, नहीं मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तुमको आना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से भी मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कि नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th century, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में यू नो
1: कहानी है,
0: तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए,
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
0: स्कूल्स
1: में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं,
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे,
0: एब्सोल्युटली।
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा।
0: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म यू नो कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को यू नो रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है अब बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, आप डरो मत। It was so sweet, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक वॉज ओनली 24 years। इस मैं नहीं करना, मैं बोल रहा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे, वो हमारी जिम्मेदारी। और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है, आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू विल बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिनसी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली। गाना ARM का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहां पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूं कब नहीं, कब यू नो नगाड़े को बोलूं कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सिंह कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता, लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज अ बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए, मैंने अनिमिता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए, ऐसे आप दो दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी तीसरे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़े इतनी बड़ी बड़ी फिल्म थी हाँ। बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।
2: और

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 5 बजते हैं। इसके साथ ही अब से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से कार्यक्रम। और लीजिए अब सुनिए आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोता दोस्तों, अब से कुछ देर बाद 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने। और उसके ठीक बाद 5:30 पर युवा दोस्त अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनेंगे हर रोज की तरह युवाणी शाम 5:30 पर। डॉक्टर नीमा रानी आज प्रस्तुत करेंगी गीता संदेश शाम 6:20 पर। आज सुनिएगा अध्याय 5 से श्लोक 4-6 तक की व्याख्या। कार्यक्रम किसान वाणी होगा शाम 6:30 पर और ग्राम संसार का समय शाम ठीक 7 बजे से। फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान होगा शाम 7:30 पर और गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम गुलदस्ता शाम 7:45 पर। श्रोता दोस्तों, फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत रात्रि ठीक 8 बजे से। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें हर रोज की तरह रात्रि ठीक 10 बजे से। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित आपकी फरमाइशी फिल्मी नगमे इस कार्यक्रम में आपकी नजर करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, विविध भारती के कार्यक्रम भी आप सुन सकते हैं हर रोज की तरह रात्रि 9:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके लिए होगा और दूसरा फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत रात्रि 9:30 से। तो ये थी आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोता दोस्तों, लीजिए अब सुनिए एक गुमशुदा के बारे में सूचना। एक लड़की जिसका नाम फिजा पुत्री सुरेंद्र कुमार, निवासी गांव कोल, थाना डांड, जिला कैथल। फिजा लड़की 26 मई 2026 को अपनी बड़ी बहन के घर पेहवा में आई हुई थी, जो 2 जून 2026 को सुबह समय लगभग 11:30 पर अपने घर से यानी पेहवा से कहीं चली गई है, जिसका अब तक कोई सुराग या जानकारी उसके बारे में हासिल नहीं हुई है। और फिजा का हुलिया इस प्रकार से है, रंग गेहुआ, शरीर पतला, उम्र करीब 21 साल, कद 5 फुट। और इन्होंने चेकदार हरे रंग का सूट व सफेद रंग की सलवार और पांव में जूती पहने हैं। इसके बारे में अगर आप कोई सूचना देना चाहते हैं या कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आप इसके बारे में थाना शहर पेहवा में ASI जो इंक्वायरी ऑफिसर भी हैं दिलबाग सिंह को दे सकते हैं, थाना में दे सकते हैं। और इसके साथ साथ एक संपर्क सूत्र है, फोन नंबर है, जिस पर आप कोई जानकारी दे सकते हैं। फोन नंबर है 7058 13 689। सूचना समाप्त हुई। FM पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं।

FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता दोस्तों, शाम के 5:05 होते हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे आपकी नजर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फांसी फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित ने, बोल गुलशन बावरा के और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम की इस पहली प्रस्तुति का।

last. कार्यक्रम का पहला गीत फांसी फिल्म से था और मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में आपने इस गीत को सुना। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आप तो ऐसे ना थे। मोहम्मद रफी की आवाज में उषा खन्ना का संगीत।

आप तो ऐसे न थे, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। श्रोता दोस्तों, लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, फिल्म प्रेम बंधन।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे थे। फिल्म थी प्रेम बंधन और बोल आनंद बख्शी के और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। श्रोता दोस्तों, लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में नसीब फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में नसीब फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता दोस्तों, इसके साथ कार्यक्रम गाने नए पुराने समाप्त करने की इजाज़त दें। नमस्कार।

FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 5:30 होते हैं। अब युवा दोस्त सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले युवा शक्ति को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, युवा अवस्था जीवन की वो सर्वोत्तम अवस्था होती है जिसे अंग्रेजी में गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, जो कि मानव जीवन का सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यही वो समय होता है जिसमें मनुष्य यानी कि हम सब अपने अपने जीवन का ना केवल निर्माण करते हैं, अपितु इसके निर्माण से अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश को भी अपना पूरा योगदान देते हैं। और जहां तक देश की बात आती है तो एक देश का जो युवा होता है वह उस देश की शक्ति माना जाता है, उस देश की ताकत माना जाता है, और युवाओं से ही देश का निर्माण होता है। और वर्तमान में पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो युवाओं का देश माना जाता है। उसका कारण यह है कि आधे से ज्यादा आबादी यहाँ पर युवा लोगों की है, युवा दोस्तों की है। तो युवा शक्ति से हम अपना सरोकार बनाए रखते हैं और कार्यक्रम युवाणी के जरिए और आपको ले चलते हैं पहले मनोरंजन की दुनिया में और आपको सुनवाते हैं कुछ सदाबहार नगमे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये विज्ञापन।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

0: शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे बोबी फिल्म से ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कर्ज फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत। उससे पहले ये विज्ञापन।
1: मंगल भवन मंगलहारी।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: शुभ दोस्तों, आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, और युवा दोस्तों के लिए ये कार्यक्रम विशेष रूप से हम प्रसारित करते हैं। और आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, वो ये कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी की इसी सफलता और राष्ट्र के प्रति

योगदान को देखते हुए पूरे भारत भर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आकाशवाणी कुरुक्षेत्र कल सुबह 5:30 पर आकाशवाणी केंद्र के परिसर से एक पदयात्रा निकालने जा रहा है। कल आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की ओर से वाकथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें हम अपने सभी श्रोताओं को भी आमंत्रित करते हैं कि आकाशवाणी के योगदान और उसकी आवश्यक भूमिका को सराहते हुए पूरे देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हम अपने कुरुक्षेत्र शहर में भी ऐसा ही कल सुबह एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आप सभी का स्वागत रहेगा सुबह 5:15 पर आकाशवाणी केंद्र के परिसर में। पंजीकरण होगा जो भी श्रोता साथी इसमें भाग लेना चाहेंगे, और पदयात्रा का जो मार्ग है वो इस प्रकार से रहेगा। आकाशवाणी परिसर से पदयात्रा सुबह निकाली जाएगी जन जागरण के लिए, जो कि कोर्ट परिसर की तरफ से, न्यायिक परिसर की तरफ से होते हुए सर्किट हाउस की तरफ जाकर रतगल रोड से पिपली रोड में मिलेगी और वापस आकाशवाणी केंद्र के परिसर में पूरी हो गई। तो ये आवश्यक सूचना थी। कल सुबह 5:15 पर आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। आकाशवाणी प्रेमी इस कार्यक्रम में जरूर भाग लेंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम में ये सूचना समाप्त हुई। आइए आपको एक बार फिर से वापस लिए चलते हैं कार्यक्रम युवाणी में, और युवा दोस्तों को सुनवाते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है सिंदूर फिल्म से, माफ कीजिए, सुहाग फिल्म से।

मुकेश और कंचन की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे हैं। फिल्म है धर्मात्मा, बोल इंडीवर के और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

शुद्ध दोस्तों, कार्यक्रम में समय की तो पाबंदी रहती ही है, लेकिन चलते चलते ये गीत आपकी नजर किशोर कुमार की आवाज में याराना फिल्म से।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। 6:10 पर रोहतक से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmoline, soybean, sunflower, mustard, groundnut, sesame oil, rice bran, cottonseed and corn oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilogram, 15 kilogram and 20 kilogram. In Madhya Pradesh, both the BJP candidates, Party National General Secretary Tarun Chugh and Rajneesh Agarwal, filed their nominations for the Rajya Sabha elections today. The nomination papers were submitted before the returning officer at the Bhopal Assembly. Senior party leaders, Chief Minister Dr. Mohan Yadav, BJP State President Hemant Khandelwal and Minister Kailash Vijayvargiya were among those present on the occasion. The Congress has fielded former Mandsaur MP Meenakshi Natarajan as its candidate. The last date for filing of nominations for three Rajya Sabha seats from Madhya Pradesh is the 8th of June. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. The Foreign Affairs Ministry of Nepal said during the meeting both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the visit will further strengthen the special partnership between India and Nepal.
3: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people-to-people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
2: Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia today said India's youth are the biggest strength of the country and will play a leading role in realizing the vision of Viksit Bharat by 2047. Addressing the youth for Viksit Bharat, My Bharat Youth Convention in New Delhi, the minister said My Bharat was created by Prime Minister Narendra Modi as a platform for youth to share their aspirations, ideas and volunteer spirit for nation building. Bahrain has said Iran launched ballistic missiles and drones towards it and Kuwait, adding that the projectiles were intercepted. The country's foreign ministry condemned the attacks and called on Iran to immediately halt strikes against its Gulf neighbors. Kuwait's foreign ministry described the attacks as a serious escalation and a blatant violation of the country's sovereignty. The statements were issued hours after the U.S. military announced it had intercepted Iranian ballistic missiles and drones targeting the Strait of Hormuz and Gulf Arab allies. In response, U.S. forces reportedly struck several Iranian coastal surveillance radar sites. In hockey, the Indian men's team has lifted the Under-18 Asia Cup for the third time, thrashing hosts Japan 4-1 in the final in Kakamigahara today. For India, Ashish Purthy starred with a hat-trick as skipper Ketan Kushwaha scored the other goal for the winners. Earlier, the Indian women's team clinched the bronze, beating South Korea 3-0. In cricket, India were 368 for 3 in their first innings against Afghanistan at stumps on day 1 in the one-off test match in New Chandigarh. Centuries from KL Rahul and Captain Shubman Gill put India in a strong position. Sai Sudarshan also contributed 81 before missing out on a maiden test 100. And with that, we end this news bulletin.
4: I'm going to go to the next one. समक्ष सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ से।
5: ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, तकनीक नवाचार व आधुनिकता के इस दौर में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण समय की मांग है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. कृष्ण मेधा ने विपक्ष द्वारा प्रदेश के कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों को खारिज किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन हेतु अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। सिरसा में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने योग प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। और फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान के तहत कल सुबह पलवल में साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि तकनीक नवाचार व आधुनिकता के इस दौर में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि युवाओं को समय की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण मिले। वे आज पानीपत जिले के समालखा कस्बे में सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र के वार्षिक स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व तेजी से बदल रहा है, ऐसे में यहां कौशल विकास केंद्र की स्थापना युवाओं को बदलते युग में खुद को स्थापित करने में मददगार होगी। केंद्र द्वारा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ कौशल प्रशिक्षण के लिए समझौता किए जाने पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यह केंद्र हजारों युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि 21वीं सदी भारत के युवाओं की सदी है। यदि युवाओं को सही कौशल, सही अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो वे न केवल अपने परिवार की तस्वीर बदल सकते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है उसकी मजबूत नींव हमारे गांव ही है। उन्होंने कहा, यह सबके लिए गर्व का विषय है कि यह केंद्र आसपास के 100 गांव के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह प्रयास गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र में किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिए जाने की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने दोहराया कि प्राकृतिक खेती करने वाले पात्र किसानों के लिए देसी गाय पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 30,000 रूपए कर दिया गया है, क्योंकि जीवामृत, घन जीवामृत और प्राकृतिक खाद तैयार करने में देसी गाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि भंडारण और प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम खरीदने हेतु प्रत्येक किसान को 3,000 रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ साथ खेती को अधिक व्यवस्थित बनाएगी। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मेधा ने आज अपने जींद आवास पर जन दरबार लगाकर आम जन की समस्याएं सुनी। इस दौरान पहुंचे लोगों की शिकायतों का अधिकांश मौके पर ही निपटान किया गया। जन दरबार में पुलिस सहित तमाम विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। जन दरबार के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. कृष्ण मेधा ने विपक्ष द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्ती से काम कर रही है।
6: मेरे ख्याल से कांग्रेस को स्वयं देखना चाहिए कि इनके कार्यकाल में क्या रहा। मैं बाकी हरियाणा की तो क्या बात करूंगा, जींद में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसपी साहब और उनकी पूरी टीम कितनी मुश्तैदी से काम कर रही है। चाहे कोई भी मामला आया, सभी मामलों को सोल्व करने का काम किया, चाहे वो गोल्ड का मामला था या कोई मर्डर केस सोल्व करने का काम किया।
5: देश के विभाजन और रिफ्यूजी शब्द के इस्तेमाल पर बोलते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारे पूर्वजों के लिए रिफ्यूजी शब्द का इस्तेमाल पूरी तरह गलत और ठेस पहुंचाने वाला है। लोग किसी दूसरे देश नहीं बल्कि अपने ही देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आए थे। हमारे बुजुर्गों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि यह पूरा ढांचा सिर्फ सोशल मीडिया प्रबंधन पर टिका हुआ है, यह बहुत जल्द जनता के सामने ढेर हो जाएगा। शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों पर और विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों की वजह से व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सरकार पूरी तरह सतर्क है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। सिरसा में 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शहीद भगत सिंह स्टेडियम में मनाया जाएगा। इसको लेकर आज एक दिवसीय योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और योग क्रिया में भाग लिया। उन्होंने योग प्रशिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से भी रूबरू होते हुए कहा, युवा ही नहीं सभी लोगों को योग को अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि योग दिवस से पहले प्रदेश भर में प्रोटोकॉल योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
7: योग को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी के दिशा निर्देशों अनुसार आज पूरे प्रदेश के अंदर हर रोज योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 2014 से प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पूरे विश्व के अंदर देश के अंदर युवाओं ने इसको अपनाने का काम किया। आज पूरा विश्व जो है 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का काम करता है। योग से सारे जुड़ रहे हैं। नियमित योग करने से बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती है। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है इसके अंदर योग बहुत ही जरूरी है, जो टेंशन से मुक्त करता है, रोगों से मुक्त करता है।
5: रिफ्यूजी शब्द को लेकर लोगों में फैले रोष बारे पूछे गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऐसी बातों की वह निंदा करते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह केवल सोशल मीडिया में है, उनका कोई वजूद नहीं है। पंजाब में होने वाले चुनाव पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार जीत मिल रही है। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा में अपनी आस्था दिखा रहे हैं, पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, पंजाब की जनता भी भाजपा की ओर देख रही है। फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पलवल में पहली बार साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल आयोजित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं एवं आमजन को फिटनेस, स्वास्थ्य जागरूकता तथा सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। खेल मंत्री ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आज युवाओं से साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की।
8: साथियों, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा फिट इंडिया और फिट हरियाणा को लेकर जो एक मूवमेंट चला हुआ है उसको लेकर ही साइकिल ऑन संडे सुबह 6 बजे हुड्डा सेक्टर 2 के ग्राउंड से सभी युवा साथी एक फिट इंडिया का मैसेज देने के लिए, फिट रहने के लिए साइकिल चलाएंगे। आप सब आइए संडे ऑन साइकिल में, आप सब मिलकर साइकिल चलाएं।
5: हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल की देवा बॉक्सिंग अकादमी में तेज तूफान से हुई क्षति का निरीक्षण किया और अकादमी की संचालक एवं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर प्रियंका तेवतिया से मुलाकात कर सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया। खेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।
9: जहाँ भी आपदा होगी वहाँ पे हम जाएंगे और जो भी मदद होगी सरकार की ओर से और व्यक्तिगत रूप से हम वो मदद करेंगे। जो हमारे खिलाड़ियों की बात थी उनके लिए भी जहाँ भी सामाजिक रूप से हमें खड़ा होना पड़ेगा, जो चीजें बच्चों के लिए खिलाड़ियों के लिए उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। इस प्रकार की आपदा में हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। जहाँ पे भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, हम भी आएंगे।
5: मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, तकनीक नवाचार व आधुनिकता के इस दौर में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण समय की मांग है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिठा ने विपक्ष द्वारा प्रदेश के कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों को खारिज किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन हेतु अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
10: FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 6:20 होते हैं। लीजिए अब सुनिए डॉक्टर नीमा रानी से आज का गीता संदेश, जिसमें आज अध्याय 5 से श्लोकों की व्याख्या की जाएगी।
11: श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 4, 5, और 6 श्लोक की व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी और कर्म सन्यासी की तुलना करते हुए कहते हैं, सांख्ययोगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थिता सम्यक् उभयोरविन्दते फलम्। सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। बच्चे ही कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग है, ज्ञानी ऐसा नहीं कहते। जो एक में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है उसे दोनों का फल प्राप्त होता है। संन्यास अर्थात त्याग दो प्रकार का होता है। एक तो वह जहाँ लोग दुनिया को बोझिल समझते हैं और जिम्मेदारियों और कठिनाइयों से छुटकारा पाने की इच्छा से इसे त्याग देते हैं, ऐसी पलायनवादी मनोवृत्ति अस्थिर होती है। ऐसे व्यक्तियों का त्याग कठिनाइयों से भागने की इच्छा से प्रेरित रहता है। जब ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्मिक पथ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वे वहां से भी अलग हो जाते हैं और सांसारिक जीवन में वापस भागने की इच्छा रखते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो पूरी दुनिया को भगवान की ऊर्जा के रूप में देखते हैं। वह यह नहीं देखते कि उनके पास जो कुछ है वह उनका है, वे इसका आनंद अपने लिए नहीं लेना चाहते। वे इसे ईश्वर का प्रसाद मानकर दूसरे की सेवा की इच्छा से प्रेरित रहते हैं। इस प्रकार का त्याग स्थिर है और कठिनाइयों से अविचल है। कर्मयोगी अपने दैनिक कर्तव्यों को बाह्य रूप से करते हुए स्थिर त्याग की भावना से विकसित रहते हैं। वे स्वयं को सेवक के रूप में और भगवान को भोक्ता के रूप में देखते हैं। वे उनकी खुशी के लिए सब कुछ करने की चेतना में स्थिर हो जाते हैं। उनकी आंतरिक स्थिति कर्म सन्यासियों के समान हो जाती है। बाह्य रूप से वे सांसारिक लोग प्रतीत होते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे सन्यासियों से कम नहीं। प्रहलाद, ध्रुव, पृथु, विभीषण, युधिष्ठिर आदि ऐसे सभी अनुकरणीय कर्मयोगी थे। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भक्त होते हैं। इस प्रकार सच्चे ज्ञानी लोग कर्मयोग और कर्म संन्यास के बीच कोई अंतर नहीं देखते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसके लिए हम योग्य हैं और उसका ठीक से पालन करने में समर्थ हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञान योग और कर्म योग को किस प्रकार देखना चाहिए यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यत सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सा पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। जो व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से आनंद की स्थिति प्राप्त करता है वह योग के माध्यम से भी उसी स्थिति में पहुंच जाता है। जो ज्ञान और योग को एक करके देखता है वही ठीक से देखता है। कर्म संन्यास के माध्यम से जो सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है वही भक्ति में काम करने से प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं वे वास्तव में चीजों को वैसे ही देखती हैं जैसे वे यथार्थ में हैं। कर्मयोग और कर्म संन्यास के माध्यम से आत्म तत्व को प्राप्त करना वैसा ही है जैसे दो यात्री अलग अलग स्टेशनों से ट्रेन में चढ़ रहे हों, परंतु दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। अब यहाँ यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कर्म और त्याग में क्या समानता है। एक व्यक्ति कर्म योग तो करता है परंतु यह ध्यान से नहीं सोचता कि वह अपने कर्म कैसे कर रहा है। उचित विचार और विवेक के बिना उसके कार्य स्वार्थी हो जाते हैं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं और अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। कोई दूसरा व्यक्ति त्याग को प्राथमिकता देता हुआ साधु का जीवन जीने के लिए एक आश्रम में जाता है, लेकिन यह जानकर भी कि उसने इस संसार को त्याग दिया है, वह भौतिक संसार में अपने जीवन के बारे में सोचता रहता है। अंत में वह भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहता है। एक व्यक्ति कर्म कर रहा है और दूसरा त्याग, लेकिन दोनों में ही ज्ञान का अभाव है। जब तक कोई कर्म करते हुए विवेक का प्रयोग नहीं करता या त्याग से पहले यह ज्ञान नहीं रखता कि मैं करता नहीं हूँ, तब तक किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। सभी वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि हमारी चेतना का स्तर हमारे मन की स्थिति से निर्धारित होता है। मन बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। चाहे कोई किसी भी प्रकार से भक्ति करे, मन को भगवान के ध्यान में लगाए रखें। जिन लोगों के पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, वे कर्म सन्यासी और कर्म योगी के बीच बाहरी अंतर देखते हैं और बाहरी त्याग के कारण कर्म सन्यासी को श्रेष्ठ घोषित करते हैं। जो लोग विद्वान हैं, वे देखते हैं कि कर्म सन्यासी और कर्म योगी दोनों ने अपने मन को भगवान में लीन कर लिया है, इसलिए वे दोनों अपनी आंतरिक चेतना में समान हैं। अगले श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्मयोग अधिक उपयुक्त क्यों है। सन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मन् चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, कर्म योग के बिना होने वाले सन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे काम क्रोध लोभ और इच्छा से ऊपर उठना चाहिए। इसके बजाय यदि कोई पहले कर्तव्य को छोड़ देता है तो मन को शुद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और शुद्ध मन के बिना सच्चा वैराग्य एक सपना बनकर रह जाता है। कर्म योग की सहायता के बिना अंतिम त्याग और आत्मबोध संभव नहीं है, अर्थात कर्म योग में पूर्णता इच्छा और आसक्ति के बिना कर्म करना और फल को भगवान को समर्पित कर देना शुद्ध ज्ञान के स्तर तक उठने के लिए नितांत आवश्यक है। निश्चित रूप से वस्तुगत जगत के बाहरी खिंचाव और दबाव के बिना ब्रह्म में स्थापित रहना कोई आसान काम नहीं है। सभी बुरे संस्कारों को दूर करना होगा और उन्हें धार्मिक कर्म और अच्छे कर्मों के इच्छा रहित प्रदर्शन के अलावा दूर नहीं किया जा सकता। जब तक कर्म योग की नींव मजबूती से नहीं रखी जाती, ज्ञान की अधिरचना एक मिनट भी नहीं टिक सकती। जब मन अशुद्ध हो और सैकड़ों तरीकों से वस्तुगत दुनिया की ओर आकर्षित हो, तो कोई कैसे आत्मिक अवस्था में स्थिर रहने की उम्मीद कर सकता है। पहले मन को शुद्ध होने दो, इसलिए भगवान सभी साधकों के लिए कर्मयोग पर जोर देते हैं। आध्यात्मिक जीवन के प्राकृतिक विकास के लिए कर्म मार्ग और ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। कर्मों के औपचारिक त्याग द्वारा संन्यास लेने का कोई लाभ नहीं है। पवित्रता और निष्पापता संन्यास के लक्षण हैं। इन्हें प्राप्त किए बिना यदि कोई व्यक्ति किसी आकस्मिक विपत्ति या कष्ट से संन्यास लेता है तो उसे प्रयास में अपमानजनक विफलता का सामना करना पड़ेगा। ऐसे मनुष्य कर्म और ज्ञान के लाभ से वंचित रह जाते हैं। निष्काम कर्म के माध्यम से पवित्रता प्राप्त करें, भगवान के प्रति समर्पण करें, कर्म का रहस्य जानें और शीघ्रता से ब्रह्म तक तभी पहुंचा जा सकता है। यह भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। बहुत से लोग अपनी सांसारिक गतिविधियों को इतना कम नहीं कर पाते कि वे किसी शिक्षक के ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी आश्रम में चले जाएं। हम में से अधिकांश के लिए हमारी इच्छाओं का खिंचाव इतना प्रबल है कि हम इस दुनिया में काम करना जारी रखते हैं। इसलिए मुक्ति हमारे कर्मों में आनी चाहिए, त्याग में नहीं। आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार है। यह स्वार्थी इच्छाएं पैदा करता है जो हमें भौतिक संसार की ओर ले जाती हैं। इसलिए जब हम सोच समझ कर कार्य करते हैं, जब हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कार्य परिणाम के प्रति आसक्ति के बिना किए जाएं, तो हमारी स्वार्थी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। श्रोताओं, आज आपने गीता संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के 4th, 5th और 6th श्लोक की व्याख्या सुनी।
10: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश, प्रस्तुति डॉक्टर नीमा रानी की थी। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 6:30 होते हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम किसानवाणी।

0: कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
1: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
2: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
2: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। बहनों और भाइयों, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और अगर जो दिन के टाइम के अलावा अगर जो सुबह शाम की भी देखें तो भाई बिल्कुल जो गर्मी अपना पूरा जोर दिखा रही है। लेकिन चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आंधी तूफान क्यों ना हो, हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं हमेशा साथियों, वे हमेशा अग्रिम पंक्ति में समाज को रखते हैं और जो उनका कर्म है वे पूर्ण रूप से उसको अच्छी प्रकार से निभाते हैं। और भाई जो कर्म हम भी ज़रूर निभा रहे हैं और कार्यक्रम किसान वाणी हमेशा आपके लिए नई नई जानकारी हमेशा लेकर आते हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपको जो जानकारी है वो सारी साझा करते हैं। और आज कार्यक्रम में साथियों हम जो चर्चा करेंगे, सफ़ेद बटन खूब लेने के बाद शेष बचे की बात करेंगे और साथ के साथ भाई नई फसल नई उमंग में हम सब्जी वाली फसलों की जैविक खेती में सावधानी और अन्य विषयों को जरूर लेंगे भाई, जिस तरह की कृत सौर ग्राम योजना को। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम आज के कृषि प्रश्न से करते हैं और आज का जो कृषि प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, यानी कि गेहूं उत्पादन की दृष्टि से आपको बताना है कि भाई जो गेहूं है वो अगर जो पूरे भारत देश की बात करते तो हरियाणा का कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा है, इसमें से आपको एक चुनना है और उसका जो सही उत्तर आप हमारे को 9466021336 पर SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से 6:50 से पहले आप ज़रूर दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। और ये तो रही भाई आज के कृषि प्रश्न की जानकारी की। और अब जो चर्चा को हम जरूर ले लेते भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ेद बटन खूब लेने के बाद शेष बचे की बात करेंगे। और देखिए जो सफ़ेद बटन मशरूम लेने के बाद शेष मशरूम खाद का जो उपयोग की हम बात कर रहे हैं तो भाई देखो लगभग देश में लगभग इसमें 2.59 लाख टन प्रति वर्ष खूब का उत्पादन होता है और इसमें 80% पैदावार है जो केवल भाई सफ़ेद बटन खूब की है। तो यो जो उत्पादन है विश्व की कुल पैदावार का 1% से भी कम है। हालांकि भाई पिछले 4 दशकों की बात करें तो देश में भाई 20 गुना खूब उत्पादन बढ़ा है, लेकिन लोगों में इसकी जो पौष्टिकता है, औषधीय गुणों की जानकारी बढ़ने के साथ ही भविष्य में भाई इसके उत्पादन बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। और देश में केवल 4 तरह की भाई खूब उत्पादन हम कर सके हैं, जिसमें भाई सफ़ेद बटन हो गया, डेंगरी हो गया, मिल्की या फिर जिसने दूध या भी कह देते हैं, और धान के पुआल की मशरूम होगी। तो जो शेष मशरूम खाद केवल भाई जो हमने ये चीज़ बताई है 4 प्रकार के खूब उत्पादन से ही हमने प्राप्त हुआ है, जिनमें गेहूं का जो भूसा या फिर धान का जो पुआल है उसमें प्रयोग में हम लेते हैं। और भारत में खूब की पैदा करने के लिए भाई केवल 0.3% जो कृषि अवशेषों का इस्तेमाल ही किया जा रहा है और ज़्यादातर भाई कृषि अवशेषों का प्रबंधन एक चिंता का विषय है। कृषि अवशेषों को भाई जलाना एक गंभीर समस्या, हम कई बार भाई देखते भी है भाई जो कई किसान भाई उसमें पुआल न जला देते हैं और अवशेषों को जला देते हैं, जिससे भाई वायु प्रदूषण तो भाई इसमें होता ही है, वातावरण प्रदूषित के साथ साथ भाई जो जीवों में कई गंभीर बीमारियों को भी निमंत्रण हम इसमें दे देते हैं। तो मशरूम का जो उत्पादन है वो एक इको फ्रेंडली गतिविधि से है, क्योंकि इसमें कृषि अवशेषों, मुर्गी की खाद, एग्रो प्रोसेसिंग अवशेषों इत्यादि को भाई खूब उत्पादन के प्रयोग में हम इसमें लाया जाता है, जिस तरह ना केवल पर्यावरण को प्रदूषित होने तक हम बचा सकते हैं किंतु खूब उगाकर लाभ भी हम इसमें कमा सकते हैं। तो खूब उत्पादन कृषि विविधीकरण का भाई एक प्रमुख अंश है। दूसरी फसलों के मुकाबले की बात करें तो भाई इसके उत्पादन में केवल 25 लीटर पानी प्रति किलो की जरूरत इसमें होती है,

जो कि भाई अन्य परंपरागत फसलों से बहुत ही कम है। तो खूब उत्पादन में कई पौष्टिक और औषधीय गुण होते हैं जो भाई लोगों को विभिन्न रोगों से बचाते हैं, और खूब में नई पौष्टिक और औषधीय गुण तो होते हैं जो लोगों को विभिन्न रोगों से बचाते हैं, लेकिन भाई जो कुपोषण की जो समस्या से निजात पाने के लिए भी भाई खूब के उत्पादन और उसके सेवन पर भाई लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित करना भाई टाइम की या मांग से है। तो हरियाणा प्रदेश की हम अगर जो बात करें तो भाई हरियाणा प्रदेश में एक अनुमान के अनुसार भाई लगभग छोटे बड़े 2000 से 2500 जो खूब उत्पादक है वो भाई सफ़ेद बटन खूब की काश्त करते हैं, और यह जो प्रदेश की कुल खूब का भाई 8% उत्पादन भाई कर हम अग्रणी प्रदेशों में एक प्रमुख स्थान अर्जित हम कर चुके हैं। और हरियाणा प्रदेश के जब हम बात करें तो भाई खूब की भाई प्रयोगशालाएं भी है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, चाहे हिसार की बात कर ले भाई, मुरथल सोनीपत की बात कर ले तो भाई प्रशिक्षण जरूर दिया जाता है। और कुछ टाइम से भाई खूब अनुसंधान की जब हम बात करें तो भाई इसमें काफ़ी उन्नति जरूर हुई है। और इसी तरह साथियों हम जो बात करें तो इसमें भाई जो खूब उत्पादन एक ऐसा व्यवसाय है जिसका कोई भी भाग बेकार नहीं हो जाता, और खूब की पैदावार लेने के बाद जो खाद बच जाती है उसे शेष मशरूम खाद के नाम से भाई जाना जाता है, और किसान को खूब उत्पादन में इस बची हुई खाद की उपयोगिता का इसमें अभाव जरूर इसमें होता है। और केवल हरियाणा प्रदेश में खूब का जो उत्पादन लेने के बाद लगभग भाई 1.2 लाख टन शेष मशरूम खाद पैदा होती है। तो खूब उत्पादन के बाद भाई किसान या फिर खूब उत्पादन इसे कहा जाता है जब कब और कैसे उपयोग में ला सके, तो इस तरह क्या गुण है, ये हम क्या फ़ायदे है, विस्तार तक हम इसकी बात ज़रूर करते हैं। क्योंकि खूब अनुसंधान की जब हम बात करें निदेशालय के सोलन की जो उस पर भी हमने ज़रूर देखा लेखों में भी भाई किसानों को और खूब उत्पादन को मुहैया इसमें कराई जा रही है, और उनके अध्ययन के अनुसार भाई शेष खूब खाद को अगर जो 8 से 16 महीने के लिए एक ढेर बनाकर गड़ने सड़ने दिया जाए तो इसमें भाई 1.9% नाइट्रोजन, 0.6% फॉस्फोरस और 1% पोटाश मिलता है, और इस तरह न केवल पौधे को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं बल्कि इस तरह मिट्टी में जो जैविक कार्बन जो हरियाणा प्रांत की जो भूमि में बहुत कम पाया जाता है, और पीएच मान भी इसमें बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप भाई जो माटी के पानी सोखने की जो क्षमता बढ़ती है, इसके इस्तेमाल तक भाई माटी की जो बनावट में भी सुधार होता है, और जो शेष मशरूम खाद का जब ढेर बनाया जाता है तो इसका आयतन अधिक होता है, और गलने सड़ने और उस उपचार के बाद इसका आयतन जो है वो कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप भाई थोड़ी सी जो जंगाइस है उसकी बात करें तो भाई इसमें ज़्यादा खाद तैयार इसमें हम कर सकते हैं। तो भाई ये तो बात करी हमने खूब की, और इस खाद में भाई कई तरह के लक्षण लवण भी इसमें मौजूद रहते हैं बिना उपचार किए, और इसकी अच्छी तरह गलने सड़ने से पहले ही खेतों में प्रयोग हम इसमें करते हैं, तो इसके इस्तेमाल से भाई लवण संवेदनशील पौधों को या फिर फसलों को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए इसके प्रयोग से पहले भाई खाद पर पानी डालकर लवण रहित इसमें करें और कम से कम 1-2 साल तक गलने सड़ने देवें, और इस खाद की विद्युत चालकता की जांच जो किसी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से करवा कर सही सलाह लेकर ही इसमें प्रयोग में लावे, ना तो भाई इसके प्रयोग से लाभ होने के बजाय इसमें हमने नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो भाई ये बात हम ज़रूर कर रहे हैं भाई इसमें सफ़ेद बटन मशरूम लेने के बाद शेष मशरूम खाद के उपयोग की हम बात ज़रूर करें, सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि साथियों जब मशरूम की हम जो बात करते हैं अध्ययनों में हमने पाया गया कि भाई शेष मशरूम खाद के प्रयोग से खेतों में औद्योगिक अवशेषों के इस्तेमाल से जो भारी तत्व खेत की जो मिट्टी में पहुंच जाती है वो पौधे और अन्य जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। इस खाद के इस्तेमाल से भाई जमीन में मौजूद इन भारी तत्वों को की कमी हो जाती है, ना तो भाई ये जो भारी तत्व है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और शेष मशरूम खाद से केचुआ खाद भी तैयार हम इसमें कर सकते हैं। तो भाई मशरूम की हमने ज़रूर बात करी शेष जो मशरूम खाद के उपयोग की, और ये तो रही भाई सफ़ेद बटन मशरूम लेने के बाद शेष मशरूम खाद के उपयोग की, और भाई अन्य चर्चा भी हम ज़रूर कर लेते हैं भाई, और ये बात हम आज भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करते हैं भाई जो सब्जी

19 वह असंतुलित उपयोग हमने शुरू कर दिया था और हमें देखा था भाई पिछले कुछ टाइम तक इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों से जमीन की उपजाऊ क्षमता भाई कमी आ रही है, जिसके फलस्वरूप फसल उत्पादन में भी भाई कमी आई है। इसी तरह फसलों के उत्पादन में भाई लागत ज़्यादा आती है, जिसके कारण आय में कमी हो जाती है। इसका कुप्रभाव मनुष्य भाई पशुओं के स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि भाई हमारा जो पानी है, भूमि है और पर्यावरण पर भी भाई स्पष्ट हमने दिखाई देता है। और भाई एक टाइम ऐसा था जब खेतों की हम बात करते तो भाई कई तरह के हमने पक्षी दिख जाते थे, लेकिन भाई आज यदि देखें तो भाई खेतों में वो पक्षियाँ भी बिल्कुल कम हो रहे हैं। और जब हम जमीन की बात करते हैं तो साथियों जो अंधाधुन हम रासायनिक कीटनाशक जो दवाइयाँ डाल रहे साथियों, कई बार हम देखते भाई कुछ समय बाद वह जो ज़मीन है बंजर हो जाती है, कुछ भी उस ज़मीन से हमें नहीं मिल पाता। तो भाई कोशिश ज़रूर करें भाई अपनी ज़मीन की मिट्टी की भी जांच कराएं, पानी की भी जांच भी कराएं और भाई जो इसके जो स्वास्थ्य है भूमि का उसकी भी जांच करके भाई उसका जो स्वरूप है सलाह लेकर उसको आप बढ़िया बनावें। क्योंकि साथियों जो ज़मीन है, ज़मीन का तो ध्यान आप जब रखोगे तो भाई फसल भी बेहतरीन होगी और इसका जो कुप्रभाव मनुष्य व पशुओं के स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि भाई पानी भूमि और पर्यावरण पर भी स्पष्ट हम देख रहे हैं। और इब हम भाई रासायनिक खादों की जहरीली कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर भाई जैविक खादों और दवाइयों का उपयोग कर अधिक से अधिक भाई उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे टाइम तक बनी रहती है बल्कि पर्यावरण में भी प्रदूषित नहीं होता और कृषि लागत घटने के बाद भाई उत्पादन की जो गुणवत्ता है बढ़ने से इसमें कृषक को अधिक लाभ भी मिलता है और मनुष्य एक प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ भी इसमें रहते हैं। तो भाई जैविक खेती क्या है इसके बारे में अगर जो बात करें, देखो जैविक खेती कृषि की एक इसी पद्धति से है जिससे भाई रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा जो खरपतवार नाशकों की जो जगह पर हम जैविक खाद, पोषक तत्वों जिसमें भाई गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर इसमें आते हैं, तो जैव नाशकों यानी कि बायो पेस्टिसाइड व बायो एजेंट जैसे क्राइसोपा आदि का प्रयोग इसमें किया जाता। तो जैविक खेती के लिए भाई बहुत जरूरी है कि भाई जिस खेत में ऐसी खेती करनी हो उस खेत में कम तक कम भाई 3 साल तक हमने रासायनिक खादों और दवाइयों का प्रयोग नहीं करना। और इसलिए अगर आप भाई जैविक खेती करना चाहते तो आज से ही रासायनिक खादों और दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देवे और इसके 3 साल के बाद आप अपने खेत में जैविक सब्जी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और जैविक कृषि के कुछ सिद्धांतों की बात हम करते हैं तो भाई स्वास्थ्य के सिद्धांत के लिए भाई कार्बनिक कृषि को मिट्टी, पौधे, पशु और मानव के स्वास्थ्य को एक और भाई अविभाज्य के रूप में बनाए रखना चाहिए। इसी तरह साथियों पारिस्थितिक विज्ञान का सिद्धांत से भाई जैविक कृषि से जैविक जीवित पारिस्थितिक तंत्र और चक्रों पर आधारित होना चाहिए, उनके साथ काम करना, उन्हें अनुकरण करना चाहिए और इससे उन्हें बनाए रखने में भाई इसमें हमने मदद करनी चाहिए। तो निष्पक्षता का सिद्धांत की बात करें तो भाई जैविक कृषि उन संबंधों पर निर्भर होनी चाहिए जो सामान्य पर्यावरण और जीवन के अवसरों के संबंध में निष्पक्षता सुनिश्चित करें। इसी तरह भाई देखभाल के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो कार्बनिक कृषि को वर्तमान और भाई भविष्य की जो पीढ़ियां और पर्यावरण के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए एक सावधानी और जिम्मेदारी तरीके से भाई प्रबंधित इसमें करना चाहिए। और जैविक खेती की कुछ प्रमुख क्रिया की बात करें तो भाई एक तो कार्बनिक खादों का उपयोग है, जीवाणु खादों का उपयोग से फसल अवशेषों का जो उचित प्रयोग से इसी तरह फसल चक्र में दलहनी और फसलों का अपनाना है और मृदा संरक्षण क्रियाएं अपनाना इसमें ये प्रमुख क्रियाएं आता है। तो भाई रासायनिक खाद व दवाइयों का विकल्प की जगह भाई रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और जैविक खाद में भाई गोबर की खाद होगी, बायोगैस की खाद होगी, केचुए की खाद होगी, कंपोस्ट है, डेचे की हरी खाद से, नीम की खड़ी है, रतन ज्योत की खड़ी से, अरंड की खड़ी का इस्तेमाल कर हम इसमें सकते हैं और भाई लाभ जरूर ले सकते हैं। तो भाई ये तो बात करी सब्जी फसलों की जैविक खेती के बारे में और अब जो चर्चा जरूर कर लेते हैं साथियों मौसम की जानकारी आपको जरूर दे देते हैं। आज का जो अधिक

अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की भी हम बात जरूर कर लेते हैं, अधिकतम 39 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की इसमें संभावना है। और इसी तरह साथियों आने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी आपको जरूर दे देते हैं। भाई कल तो है रविवार, कार्यक्रम रहेगा थारे संदेश मारे गीत, और सोमवार को जो हम कार्यक्रम अन्नदाता लेकर आए हैं भाई, इसमें हम जो चर्चा इसमें करेंगे भाई टिश्यू कल्चर तकनीक का कृषि में महत्व, और आज की नसीहत में हम बात करोगे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बागवानी, और ग्रीष्मकालीन मूंग फसल की देखभाल भी हम जरूर सोमवार को चर्चा करेंगे। भाई कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर इसको सुनिए। तो ये तो बात करें भाई हमने आने वाले कृषि कार्यक्रमों की, और हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं भाई संगीत का, तो ये रागनी सुनते हैं, लेकिन पहले कुछ संदेश और उसके बाद ये रागनी।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

संग के साथी। तम दया मेरे पे फेर दियो, मने देश के वो

ਦਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਦਾ ਮਾਰੇ ਖਾਨ ਦਾ।

प्रेम कोर के दौरन का नहीं थक मैं बात करे कौन किसे की रंगील

इसकी जेल ना तो चली।

0: बैनर भाइयों, ये तो आपने रागनी सुनी और मेड सिंह की हिट रागनियों में से हमने इसको ज़रूर शामिल करा था। और साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको हम ज़रूर दे देते हैं। और भाई, बात हम करे है भाई इसमें, भाई आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की तरफ से भाई 90 वर्ष पूरे होने पर भाई कल मैराथन का भाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा आकाशवाणी कुरुक्षेत्र केंद्र से। और भाई समय रहेगा ठीक 5 बजे, 5:15 बजे तक आप ज़रूर आइए और इसमें आप ज़रूर भाग लीजिए। और वॉकथॉन में आप भाई साथ चलेंगे और स्वस्थ समाज की ओर आप ज़रूर कदम बढ़ाएंगे। और आकाशवाणी के भाई 90 वर्ष पूरे होने पर भाई ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र केंद्र की तरफ से भाई आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिसर में भाई इसका जो आयोजन भाई यहाँ पर किया जाएगा। और भाई इस परिसर में आप ज़रूर आइए और 5:15-5:30 बजे से पहले आप यहाँ पर आके स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन को आप आगे बढ़ाइए, समाज को एक बेहतर आप एकता का संदेश जरूर दीजिए और साथ ही स्वच्छ पर्यावरण बेहतर कल की ओर एक कदम आप ज़रूर बढ़ाइए। और भाई देखिए, जो चलो साथ स्वस्थ समाज की ओर आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। कल रविवार सुबेरे हम 5:15 बजे इस का आयोजन कर रहे हैं और हम सभी की बदौलत इस कार्यक्रम को हम ज़रूर सफल बनाएंगे। तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज़रूर दी। और इससे पहले साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न भी ज़रूर पूछा था कि गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। और भाई देखो, इसके जो स्थान की बात करते भाई, जो चौथा स्थान है। और इसका जो सही उत्तर हमारे पास भाई व्हाट्सएप आए है और ये जो भाई सही जवाब हमारे को दे दिया भाई विक्रम योग भारती, हरमन योग भारती, संध्या सैनी, खुशप्रीत अम्बली गांव फलसंडा जाटान कुरुक्षेत्र से। इसी तरह साथियों, गेहूं के उत्पादन की जब हम बात करें तो भाई इसमें मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र से भाई यशपाल धीमान और कृष्णा धीमान और धीमान फैमिली की तरफ से भी ज़रूर आया है। और रणधीरी सिंह बांगड़ मेजो देवी यमुनानगर से गांव जोगुड़ी से भी उनका सभी जो सही जवाब आया है। और कुरुक्षेत्र से भी हम सही जवाब ज़रूर ले रहे हैं भाई, ये पारस बबीता और भारत का ये सही जवाब आया। और कुरुक्षेत्र सेक्टर 30 से ही हम जो मनोज रेखा निधि निशा धर्मपाल और मूर्ति देवी की तरफ से भी भाई ये सही जवाब आया है। और आपको बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते हमेशा आप ऐसे ही इसमें भाग जरूर लेते रहेंगे। और महत्वपूर्ण जानकारी भाई किसान कॉल सेंटर की भी आपको जरूर दे देते हैं 1551। और भाई जो PIB ऐप के माध्यम से भी आप घर बैठे सारी जानकारियां आप इसमें ले सकते हैं। और बात हम आपसे ज़रूर करें साथियों, एकीकृत सौर ग्राम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना और गांवों को 100% सौर ऊर्जा से लैस करना है। इसके तहत गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, घरेलू सोलर सिस्टम और सौर पंप लगाए जाते हैं जिससे बिजली की बचत तो होती है और पर्यावरण का फायदा भी ज़रूर होता है। तो इस योजना के लिए भाई आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और समाज को एक बेहतर संदेश देकर एकीकृत सौर ग्राम योजना को आप आगे ज़रूर बढ़ाएं।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: तो बहनों और भाइयों, आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त और गर्मी में आप अपना भी, परिवार का भी और पशुधन का भी जरूर आप ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को राम राम।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। समय ठीक 7 बजे है और अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे किसानवाणी। अब कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम संसार।

कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, कार्यक्रम ग्राम संसार यानी कि गांव गुआंड, वो हमारी लोक संस्कृति की वो सभी तमाम बातें जरूर हम इसमें जिक्र करते हैं, जिस तरह हमारा देश हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहे और संसार के अंदर भाई हमारे देश का नाम रहे। और कार्यक्रम ग्राम संसार में हम जो आज विषय लेकर आते आए हैं साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे भाई, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसी तरह विश्व कीट दिवस की भी हम जरूर बात करेंगे। और कोशिश हमारी ये रहती है भाई, जितने भी दिवस है जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप सभी के साथ साझा करें, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो युवा बच्चे हैं, वे हर बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम आगे बढ़ते हैं। और भारत देश तो भाई युवाओं का देश है, और युवा जहाँ पर इकट्ठे हो जाते साथियों, उस देश की तरक्की हमेशा आगे रहती है। और बात आज हम कर रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, जो भाई प्रतिवर्ष हम 7 जून को हम मनाते हैं। और इस वैश्विक अभियान का जो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो भाई, जो दूषित भोजन से होने वाले जो स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना है, उनकी पहचान करना है, और लोगों की जो सुरक्षित व पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता को इसमें बढ़ाना है। और मैं मुख्य बिंदु की जब हम बात करते तो भाई देखो, इसकी दिवस की जो शुरुआत भाई संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 2018 में की गई थी, और इसे पहली बार जब भाई मनाया गया तो भाई 7 जून 2019 को हमने मनाया था। और आयोजन की जब हम बात करते तो भाई, ये जो अभियान है मुख्य रूप से भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसने FAO भी बोल देते हैं, उसके द्वारा मिलकर ये चलाया जाता है। उद्देश्य की जब हम बात करते तो साथियों, खेत से थाली तक, जो फ्रॉम फार्म टू प्लेट, भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखना, ताकि मानव स्वास्थ्य, कृषि और सतत विकास को इसमें बढ़ावा मिल सके। तो साथियों, चर्चा गहनता से जरूर करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हम जो भाई कुछ संदेश से, कुछ लोकगीत भी आपको जरूर सुनाएंगे। और सुनते हैं ये बढ़िया सा लोकगीत, लेकिन पहले कुछ संदेश।

0: किसानों की पहली पसंद कंपोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
1: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
0: कंपोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
1: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
0: खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंपोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
1: 9813173102।
0: कंपोज एक्सपोर्ट्स भरोसे का प्रतीक।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: किसानों की पहली पसंद कंपोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
1: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
0: कंपोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
1: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
0: खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंपोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
1: 9813173102।
0: कंपोज एक्सपोर्ट्स भरोसे का प्रतीक।

0: किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
1: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
1: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
0: खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
1: 9813173102।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।
2: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
3: बहनों भाइयों, ये जो आप संदेश सुन रहे थे यूनेस्को का, ये आकाशवाणी और यूनेस्को के सहयोग से आप इसे सुन रहे थे और चर्चा हम जरूर कर रहे थे साथियों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो 7 जून को हम मनाते हैं, उसकी पूर्व संध्या पर हम बातचीत जरूर कर रहे थे। क्योंकि साथियों देखो, जो आरंभ की जब हमने बात करी भाई 2018 में की गई थी और 7 जून 2019 को हमने इसे मनाया था। और देखियो भाई, उद्देश्य तो यही है कि भाई खेत से थाली तक, यानी कि जो अन्न है वो आपके पास ज़रूर पहुँचाए, उसकी गुणवत्ता बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे, ताकि मानव स्वास्थ्य, कृषि और सतत विकास को इसमें बढ़ावा मिले। और बातचीत हमने जरूर करी थी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। इसी तरह साथियों अन्य महत्वपूर्ण भी जानकारी हम जरूर आपसे देते हैं, क्योंकि साथियों हमारी कोशिश ये रहती है कि हमेशा महत्वपूर्ण जानकारी से हम समाज को आगे बढ़ाएं। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की जब हम बात करते थे साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल भी है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से, महत्वपूर्ण जो कार्यक्रमों को हम उस पर अपलोड करते हैं। और हाँ, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। क्योंकि जो आज जिस तरह डिजिटलाइजेशन है, मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल के माध्यम से भी आप रेडियो से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे ऐप्स हैं, तो प्ले स्टोर में जाके आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूज़ ऑन AIR भी है, अन्य भी है। जब आप कुरुक्षेत्र को लिखते हैं तो साथियों जो लाइव कार्यक्रम हमारे होते हैं वे सीधे हम आप हमारे से जुड़ जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको ज़रूर दे देते साथियों, आकाशवाणी के भाई 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की तरफ से वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। और भाई ये रविवार को 7 जून को है और समय रहेगा भाई 5:15 बजे, तो आप ज़रूर आइए और चलो साथ स्वच्छ समाज की ओर का संदेश देने के लिए आप ज़रूर आइए। और इसके लिए भाई जब आप

अब हमारे पास जब आते हैं तो साथियों इसको आप संदेश के साथ आगे भी बढ़ा सकते हैं इसमें। और इसी तरह साथियों जब इस दौड़ में हम दौड़ते हैं तो समाज भी जरूर दौड़ता है। और इसमें साथियों हमने शुरुआत से ही अपडेट भी किया है और https/ और forms.gle पर भी भाई लोगों ने ज़रूर अपडेट करके हमारे को जो यहाँ पर नाम भी ज़रूर लिखवाया और आप ज़रूर आते हैं। तो साथियों आप इस स्वास्थ्य को आगे बढ़ाते हैं और समाज में एकता का संदेश देते हैं और स्वच्छ शरीर स्वस्थ जीवन को आप आगे बढ़ाते हैं और स्वस्थ पर्यावरण बेहतर कल को आप हमेशा अग्रिम पंक्ति में रखते हैं। तो साथियों ये तो संदेश और है, लेकिन अब भाई लोकगीत जरूर सुनते हैं और लोकगीत के बाद हम जो जानकारी आपसे साझा करेंगे विश्व कीट दिवस के, तो सुनते हैं ये लोकगीत।

मैंने भाइयों ये आपने गीत ज़रूर सुना। और भाई गीत जब हम देखते हैं तो साथियों कई गीत ऐसे हैं जो हमारे जीवन से ज़रूर जुड़े होते हैं। और जब हम अतीत में जाते हो भाई ब्याह शादियों में भाई ये पूरा रंग जमा देते थे। और भाई पियर सासरा से हमने ज़रूर इस गीत को लिया था। और भाई सुरेश वाडेकर की आवाज़ में और भाई महत्वपूर्ण जो गाए गाने हैं हरियाणवी जो उनको भाई बॉलीवुड सितारों ने भी इसमें ज़रूर गायकों कलाकारों ने आवाज़ ज़रूर दी है। और जब गीत संगीत की हम बात करते तो साथियों हमारा अतीत है और हमारा जो भविष्य भी हम कई बार देखते हैं भाई। आज हरियाणवी जो कल्चर है जो लोक संगीत है भाई बिल्कुल दुम्मा जरूर उठा रहा है और दुम्मा हम भी जरूर उठा देते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके बीच में जरूर लाते हैं। और भाई आज जो एक अन्य जानकारी भी हम आपको जरूर साझा कर लेते हैं भाई विश्व कीट दिवस की। और भाई देखो विश्व कीट दिवस प्रतिवर्ष हम 6 जून को इसमें आयोजित करती है। और ये जो दिवस है भाई वैज्ञानिक कीट प्रबंधन यानी कि पेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि सुरक्षा के महत्व के बारे में भाई ये जो जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। और जब इसके उद्देश्य और महत्व की जब हम बात करते हैं तो देखो एक तो सार्वजनिक स्वास्थ्य है भाई, जो मच्छर है, मक्खियाँ है और चूहे जैसे कीट बीमारियाँ जिस तरह भाई डेंगू है, मलेरिया ये फैलाते हैं जिन्हें नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी सा है। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो भाई कीटनाशक और कीट फसल व अनाज का भाई भारी नुकसान तो करते हैं जिसे वैज्ञानिक प्रबंधन के द्वारा रोका जा सकता है। और वैज्ञानिक नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो अंधाधुंध जो कीटनाशकों के बजाय पर्यावरण के अनुकूल संतुलित कीट प्रबंधन विधियों को हमने बढ़ावा देना चाहिए। और भाई जो शुरुआत की हम जब हम बात करते हैं भाई इस दिवस की शुरुआत 2017 में चीनी कीट नियंत्रण संघ द्वारा की गई थी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन ऑफ एशियन एंड ओशिनिया पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त हुआ। और कृषि और पर्यावरण की जब हम बात करते थे, हालांकि भाई जो सभी कीट हानिकारक नहीं होते और मधुमक्खियां परागण में मदद करती है, लेकिन फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीटों के नियंत्रण के लिए भाई जैविक कीटनाशकों के उपयोग पर जोर दिया जाता है। और अगर जो आप कीट प्रबंधन से का ध्यान रखते हैं तो साथियों निश्चित तौर पर भाई समाज अग्रिम पंक्ति में रहता है। और कोशिश हमने ज़रूर करनी चाहिए भाई इसका जो ये जो विश्व कीट दिवस है इस पर हम जागरूकता बढ़ाएं, अपने बच्चों को भी ज़रूर बताएं। और भाई देखिए जो मच्छर या अन्य जो कीट पैदा होते थे साथियों कई बार हमारे कारण भी हो जाते हैं। हम खुले में भाई पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और या छत की बात करते हैं भाई छत के ऊपर भी भाई जो सामान रखा रहता है जब बारिश होती है तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, भाई मच्छर पैदा होते हैं। तो कोशिश जरूर करें भाई जागरूकता जरूर बढ़ाएं, साफ सफाई का आप हमेशा ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि साफ सफाई जब रहती है तो साथियों पर्यावरण भी शुद्ध रहता है और जो हवाएं भी बेहतरीन होती है। और अगर जो साफ सफाई नहीं रखते तो भाई स्वास्थ्य जो हमारा डगमगा जाएगा और भाई हम बीमार हो जाएंगे। और जब बीमार व्यक्ति हो जाता है तो साथी वो समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता है और समाज के अंदर भी देखा है तो साथियों नुकसान ज़रूर होता है। तो कोशिश जरूर करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छी तरह खाए पिए और कोई भी चीज़ हो साथियों उसको आप व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि बात हम जरूर कर रहे थे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। और कई बार हम ब्याह शादियों में भी देखते हैं साथियों थालियों के अंदर हम इतना ज़्यादा डाल लेते हैं, हम ये भी नहीं सोचते भैया अगर जो हमारे को कोई बुला भी रहा है तो कितनी मेहनत से उसने आयोजन किया, खाना भी बनाया है। और कोई अगर जो खाना जब खेतों में पकता है तो साथियों जब गेहूं की बात करें, चावल की बात करें तो उसमें भाई 2-3 महीने ज़रूर लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं, 5 महीने लग जाते हैं और साल भी कई बार फसलों में ज़रूर लगता है। जिस तरह साथियों हमें समझना चाहिए भाई जब इतना समय लग रहा है तो हम 1 मिनट भी नहीं लगाते इसको व्यर्थ करने में। तो कोशिश जरूर करें भाई समाज को जागरूक करें और हमेशा आप अग्रिम पंक्ति में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखें। अच्छा बहनों भाइयों राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोता दोस्तों, शाम के 7:30 होने को हैं। अब सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा जय जवान। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय जवान।

0: कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले सभी सैनिक भाइयों और श्रोता साथियों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में मित्रों आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे फौजी भाइयों को समर्पित रहता है। उनके मनोरंजन हेतु हम कुछ सदाबहार गीत प्रस्तुत करते हैं और कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज में नागिन फिल्म से। 1976 में ये फिल्म आई थी, लेकिन उससे पहले ये विज्ञापन।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: तो दोस्तों, एक जरूरी संदेश। कल प्रातः 5:15 पर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के परिसर से एक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफलतापूर्वक संचालन और राष्ट्र निर्माण में योगदान के ऊपर आधारित है। आकाशवाणी जो कि एक सांस्कृतिक दूत के रूप में भी कार्य करता है, आप सभी जानते हैं, सूचना और जानकारियों का केंद्र आकाशवाणी का प्लेटफॉर्म 90 वर्षों की अपनी यात्रा पूरी कर चुका है। 1936 से चलकर 2026 तक हम आ पहुंचे हैं। तो इसी संदर्भ में आकाशवाणी के योगदान को देखते हुए कल प्रातः आकाशवाणी कार्यालय या परिसर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पदयात्रा निकाली जाएगी। और उसके लिए आप सभी श्रोता साथी या दूसरे लोग जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। सुबह 5:15 पर रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद, पदयात्रा के बाद, आकाशवाणी परिसर में भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रहेगा। तो कृपया आप सभी इसमें आ सकते हैं और कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं और आकाशवाणी को सपोर्ट कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। तो दोस्तों, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जय जवान, और कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी नजर

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाइड फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसके साथ ही कार्यक्रम जय जवान अब यहीं संपन्न होता है।

FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:45 होते हैं। अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं गुलाम अली, उन्हीं की गाई कुछ सदाबहार गजलें इस कार्यक्रम में आपकी नज़र।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी रचनाओं के कार्यक्रम गुलदस्ता में गुलाम अली की आवाज में कुछ सदाबहार गजलें। एल्बम तेरे शहर में, आइए सुनते हैं इसका ये टाइटल सॉन्ग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजते हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

0: कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इंतजार शीर्षक पर। तो दोस्तों, आज का शीर्षक हमने आपसे सीधे ही साझा किया है। इंतजार शीर्षक पर कुछ फिल्मी नगमे होंगे, कुछ बातें भी होंगी और कार्यक्रम का हम सभी आनंद लेंगे। हालांकि इंतजार शीर्षक पर गीतों की श्रृंखला बहुत विस्तार से उपलब्ध नहीं है, फिर भी कार्यक्रम में बहुत से गीत शामिल हम करेंगे। तो बात इससे पहले कि हम शुरू करें, पहले ये संदेश और उसके बाद हम बात शुरू करते हैं।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
0: दोस्तों, इसी संदेश से जुड़ा अगला हमारा संदेश। दोस्तों, कल आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के परिसर से सुबह 5:15 पर हम एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जो आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली इतिहास के बारे में रूबरू करने के बारे में होगा, जिसे आप थोड़ा सा यूं भी कह सकते हैं कि जन जागरण अभियान के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। और दोस्तों, ये पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और निश्चित रूप से आकाशवाणी इस चीज़ का हकदार भी बनता है, क्योंकि आकाशवाणी केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता। आकाशवाणी सूचनाओं और जानकारियों का सबसे बड़ा और सशक्त एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, जहां से बहुत सी जानकारियां, सूचनाएं समय समय पर लगातार आकाशवाणी आपकी सेवा में, देश के लोगों की सेवा में समर्पित करता आ रहा है। मनोरंजन भी खूब होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हम सभी सुनते आए हैं। तो संस्कृति का एक दूत आकाशवाणी ने अपने गौरवशाली इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो उसी संदर्भ में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के परिसर से हम सुबह ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एक पदयात्रा का कार्यक्रम भी रहेगा, उसके बाद परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक झलक भी रहेगी। तो इस प्रकार से कल सुबह ये कार्यक्रम होगा, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। तो ये बात हम यहीं समाप्त करते हैं और अब वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। तो दोस्तों, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज का हमारा शीर्षक है, जैसा हमने आपको बताया, इंतजार। इंतजार दोस्तों अपने आप में वो एक शब्द है जो कई प्रकार के अर्थ अपने अंदर समेटे हुए होता है। इंतजार का मतलब केवल जिसे हम दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें या पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल करें, प्रतीक्षा करना तक ही सीमित नहीं है, या इंग्लिश में जिसे हम वेट कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि किसी विशेष प्रायोजन के साथ आप धैर्य धारण करें। जीवन में बहुत सी दोस्तों, घटनाएं और बातें हम सब के साथ ऐसी जुड़ती हैं, होती हैं, जहां पर हमें इंतजार के अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अर्थ लेने होते हैं और अपना व्यवहार भी प्रदर्शित करना होता है। अब जहां तक इंतजार शब्द की आगे की बात आती है, तो इंतजार शब्द में बहुत सी बातें जब आती हैं तो उनमें एक भाव खूबसूरती का आता है, सुंदरता का आता है, प्रेम का आता है, समर्पण का आता है, जिसमें बड़ी खूबी के साथ इंतजार को स्वीकार किया जाता है, इंतजार को माना जाता है, अपनाया जाता है, या यूं कहें कि उसको हम अपने हृदय से, अपने मन मस्तिष्क से स्वीकृति देके उसका आनंद लेते हैं। कारण, कार्य, बात, इंसान, परिस्थिति, जगह कोई भी हो सकती है। तो हमें बहुत बार इंतजार करना पड़ता है, कई बार हम को कोई कहता है और कई बार हम उस सारी बात को समझकर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं या हम इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, इसी से जुड़ा बेहद खूबसूरत गीत रफी साहब की आवाज में बहु बेगम फिल्म से। तो आनंद लेते हैं कार्यक्रम के इस पहले गीत का, जिसकी शुरुआत रफी साहब की आवाज से हो रही है।

तो दोस्तों, बहू बेगम फिल्म का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में बेहद शानदार गीत, और जितना सुनने में ये गीत तब अच्छा लगता था जब ये फिल्म आई थी 1967 में, तब से लेके आज तक लगातार ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में अपनी खूबसूरती, अपना एहसास बनाए हुए हैं। हालांकि इसी फिल्म में ये गीत आशा जी की आवाज़ में भी है, कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम में उसको भी हम शामिल कर पाएं। तो बात दोस्तों इंतज़ार शब्द की जब हम करते हैं तो बहुत कुछ उसमें हम महसूस भी करते हैं। अब जब इंतज़ार शब्द का अगला अर्थ या अगले मायने जो भी हम निकालें, उसमें खुशी से हम जब इंतज़ार करते हैं अपनी स्वीकृति के साथ, वो हमने बहू बेगम के इस गीत में सुना। और दूसरा इंतज़ार का भाव वो होता है जिसमें हम डेलिब्रेटली वेट कर रहे होते हैं, गंभीरता से प्रतीक्षारत होते हैं और लगातार उस प्रतीक्षा या इंतज़ार के क्षणों को कम होते हुए देखते आते हैं, और बड़ी हम शिद्दत से उस समय या उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब वो चीज़ें समाप्त हों और हम अपने मुकाम पे पहुँचें। इस भाव के साथ भी इंतज़ार शब्द हमारे सामने आता है, और हिंदी फिल्म जगत में बहुत से

गीत ऐसे आते हैं जो अलग अलग भावों को प्रदर्शित करते हैं। शब्द बेशक साधारण हो या विशेष हो, लेकिन भाव गीतों में बखूबी झलकता है, जिसे गीतकार अपने कलम से कलमबद्ध करते हैं और संगीतकार उसे सुरों में पिरोते हैं। भाव ही होता है जो असल में उसके मायने स्पष्ट करता है। और देखिए, जहां अब आपको हम एक गीत सुनवाते हैं जिसमें काफी कुछ आपको अपने आप ही पता लगेगा या आप उसे महसूस करेंगे। डॉन फिल्म का गीत, आइए सुनते हैं।

डॉन फिल्म का यह गीत आपने सुना। दोस्तों, शब्दों के चयन में हमें बहुत बार सतर्कता भी बरतनी पड़ती है। आसान भाषा में कहें तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि शब्द के अर्थ क्या हो सकते हैं, क्या निकाले जा सकते हैं। जहां तक शब्दों के होने की बात है, अर्थ के होने की बात है, वो बात बिल्कुल आसान है, सरल है। लेकिन शब्द के अर्थ क्या निकाले जाएंगे, ये हमारे हाथ में या हमारे बस में नहीं होता। तो फिर ये होता है सामने वाले या सुनने वाले के हाथ में, उसके हिसाब से। तो बात यहां पर यह आ जाती है कि शब्दों का चयन ध्यान से करना ही फायदेमंद होता है। अब इंतजार शब्द के अर्थ में बहुत सारी बातें आती हैं। सरल अर्थ भी होता है, कुछ विशेष अर्थ भी होता है। किस संदर्भ में, किस परिस्थिति में, किनके साथ क्या बात हो रही है, तो वहां पर ये चीजें कुछ अलग अलग अपनी वैल्यू रखती हैं। अमीर गरीब फिल्म का एक गीत, आपकी नजर।

कई बार दोस्तों इंतजार जब हमारा कोई कर रहा होता है तो ये बात अगले को तो खैर अच्छी लगती ही है, हमें भी खुशी के कुछ पलों को हमारी ओर भेज देती है। तो दोस्तों बात इंतजार शब्द को महसूस करने की है, चाहे उसे हम खुद महसूस करें चाहे कोई और महसूस करे। कई बार ये दोनों बातें हमारे लिए बड़ी सुकूनदेह भी होती हैं। आइए कार्यक्रम में अब आपको लिए चलते हैं इस गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म शराबी से।

तो दोस्तों, शराबी फिल्म का ये गीत आपने सुना, इंतहा हो गई इंतजार की। तो दोस्तों, शब्दों का चयन एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार इंतजार इतना अधिक आगे बढ़ जाता है या लंबा हो जाता है जिसकी एक सीमा निर्धारित जो होती है वो भी पूरी हो जाती है। टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद इंतजार शब्द कुछ और अर्थ लेके सामने आ जाता है। तो मानव स्वभाव है, कई प्रकार की बातें प्रतिक्रिया स्वरूप हम करते हैं। तो बात कुल मिलाकर यहां पर ये आती है कि इंतजार ठीक है, लेकिन कई बार सीमाओं से परे जाना समस्याओं को या गड़बड़ को इनवाइट करना हो जाता है। खैर, तो ये भी एक भाव है, एक परिस्थिति है। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कयामत से कयामत तक इस फिल्म का ये गीत, जो कि 1987 या 88 के वर्ष में आई थी। बड़ा ही हल्का फुल्का सा और प्यारा इसमें, या कहें आप, एक संगीत निर्देशन देखने को मिला था। आइए सुनते हैं पहले ये गीत, फिर कार्यक्रम में बातें आगे बढ़ा कर रखेंगे।

और दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में एक बार फिर से बहू बेगम फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, जो कि आशा भोंसले और रफ़ी साहब युगल स्वरों में ये गीत है। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम में इस अंतिम गीत का।

और दोस्तों इसके साथ ही कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत समाप्त करने की अपने दोस्त नवीन को इजाजत दें। आज आप सुन रहे थे इंतजार शीर्षक पर कुछ फिल्मी गीत। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 8:45 अब होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। उसके बाद रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार होंगे। 9:15 से आगे आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार

0: संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: करता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर

लता मंगेशकर को और सखियों को आप सुन रहे थे मधुमति फिल्म के इस गीत में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और संगीतवत किया था सलिल चौधरी ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह,

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपने कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाले इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रहीं फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बने फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन

0: अब अपने दोस्त कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के ठीक 10 बजते हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातें सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे बहुत से दोस्तों के व्हाट्सएप संदेश हमें मिल चुके हैं और आपकी फरमाइश हम इस कार्यक्रम में पूरा करेंगे। और इसके साथ साथ कोशिश ये भी रहेगी, क्योंकि सूची बहुत लंबी है फरमाइशी संदेशों की, तो सभी के नाम या ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के नाम कार्यक्रम में शामिल हो पाए। एक गुजारिश के साथ कार्यक्रम शुरुआत करने की आज्ञा चाहते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं कि कृपया इस समय हमारे कोई भी श्रोता दोस्त जो भी हमें सुन रहे हैं, कृपया हमें व्हाट्सएप संदेश ना करें, क्योंकि इस समय उनके व्हाट्सएप संदेश हम अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाएंगे। इस बात के लिए हम क्षमा भी चाहते हैं और कार्यक्रम को शुरुआत भी देते हैं। शुरुआत देते हैं एक गीत के साथ, बेहद मखमली आवाज के सम्राट वो इस हिंदी फिल्म जगत के गायकों की श्रेणी में आते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं हेमंत कुमार की, हेमंत दा के नाम से जो फिल्मों में मशहूर रहे हैं। फिल्म का नाम बात एक रात की। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला है SD बर्मन ने। आइए आनंद लेते हैं श्रोता दोस्तों इस गीत का और पसंद करने वाले श्रोता साथियों के नाम गीत के बाद।

बात एक रात की। इस फिल्म में अभी आप गीत सुन रहे थे हेमंत दा की आवाज में। श्रोता दोस्तों, इस गीत को पसंद करने वाले दोस्तों के नाम इस प्रकार से हैं: ये संदेश जो हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम का सबसे पहला संदेश, जलालाबाद मुजफ्फरनगर यूपी से राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी, जिशान मंसूरी, ये हमारे दोस्त हैं। नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से आप हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार और इनके बहुत से दोस्त। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप, शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, ये हमारे दोस्त हैं। विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नहाटा, दीक्षा कुश मूणत, बोरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आप हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश। गांव बहरामपुर टेमा खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, समर, आर्यन, आरोही, ऐशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा, ये हमारे साथी हैं। सनावत से शेख मूसा, मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुढ़ाना। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म का नाम है रात और दिन। लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत शैलेंद्र के बोलों को सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम में अगली पसंद हमारे इन दोस्तों की आप सब हैं। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चडालिया, लक्ष्मी, सुरेंद्र, बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र और इनके परिवार के सदस्य आप सब हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र से जगपाल हुड्डा, सानिध्य हुड्डा और सुनैना हुड्डा, अगला संदेश हमारे इन दोस्तों का आप सब हैं। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना, ये हमारे दोस्त हैं। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन और सुरेखा सेन, आप हैं। मुंगी पैठन महाराष्ट्र से बाबा साहा कणगरकर, सारख बाई कणगरकर, परमेश्वरी रोहिणी कणगरकर परिवार, छटिया पोखुर डुमराव से आप हैं। फातिमा वली बेलदार, डब्ल्यू वली बेलदार, अस्मा वली, सोनम वली, बिहार भवन दिल्ली से सरफुद्दीन कुटरिया, उलाहवल्ली कुटुरिया, और ये हमारे साथी हैं। जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अस्मा कौर, धर्मजीत फातिमा कौर, और ये संदेश हमारे इन दोस्तों का। सरगुजा मैनपाट से अस्मा थापा, सोनम, फातिमा, अस्मा, वसीम और अकरम थापा, गांव लसुड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़ से, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। तो दोस्तों, लीजिए अपनी पसंद पर सुनिए संबंध फिल्म में ये गीत मुकेश की आवाज में, प्रदीप के बोलों को सुरों में ढाला है ओपी नैयर ने।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से आप हैं उत्तम सिंह झंगेल मोरस अनिल अजीत आयुष नंदनी झंगेल ये हमारे दोस्त हैं। मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर मोहम्मद साजिद अली मोहम्मद जाहिद अली मोहम्मद शाहिद अली शास्त्री नगर बीड शहर महाराष्ट्र से किशन सपकाल आशा सोनिया साईराज और विशाल आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश मैंडी सौरव साइना निवान। अगले हमारे दोस्त हैं इस कार्यक्रम में गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा विशाल विकास

रोशनी और शगुन, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम सदर बाजार कुरावली से, ये हमारे साथी हैं। राजेश सावले पाटिल, राजदीप, राशि, राजेश, शीतल राजेश, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा, ये हमारे दोस्त हैं। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब, आप सब हैं गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से। और ये संदेश हमारे इन दोस्तों का, मजनू का टीला दिल्ली से, कमल बालूजा, मधु सागर, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल, दंतरेगी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और मुसर्रत जहां नाज, तलहत जहां नहाज, फरहत जहां नाज, रिफत जहां नाज, नुजहत जहां नाज, शाजिया शाहीन, नाजिया नूरी नाज, आप सब हैं नूर महल महसोल सीतामढ़ी बिहार से। श्रोता दोस्तों, लीजिए अब सुनिए ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया। जी एस रावल के शब्दों को सुरों में पिरोया है सोनिक ओमी ने।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चांदनी रातें आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से अपने दोस्त नवीन के साथ। और आज के इस कार्यक्रम का आधा सफर समय के हिसाब से पूरा हो चुका है और आधे सफर के अंदर हम आपके साथ बहुत प्यारे गीत साझा करने वाले हैं जो कि आप ही की फरमाइश पर है। अगला फरमाइशी गीत तीसरी कसम फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोलों को शुरू में पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, एक रंग कार्यक्रम में

तो श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चांदनी रातें, और कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे इन दोस्तों की, आप हैं गांव जगुड़ी रादौर यमुनानगर हरियाणा से रणधीर बांगड़ गुरमेजो गौरव प्रवीण युगम वीरेन, गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया नमन ढींगिया अपार ढींगिया, अगला संदेश हमारे इन दोस्तों का, शंभुदयाल खटक विमला देवी अमरजीत सुंदरलाल योगेश दीपक पूजा गांव जाखोद राजस्थान से, ये हमारे साथी हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला पंजाब से, मुकेश बत्ता नीलम नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता, उदय भानपाल जय हिंद दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश दिव्यांश और इनके परिवार के सदस्य, आप हैं राजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, ये हमारे साथी हैं गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी राघव हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्य, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता, ये हमारे साथी हैं शिव कॉलोनी रादौर यमुनानगर से राजकुमार पुजारा अनीता पुजारा गायत्री पुजारा साहिल और रोहन, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन वीना चैतन्य मेघा मस्किन,

आप सब हैं चकला बाजार समाणा शहर पंजाब से, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता आरजू, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल, शक्ति, संजीव बंटी और इनके परिवार के सभी सदस्य हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम में ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में

ले भाई, छत्तीसगढ़ से आप सब हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, ये हमारे साथी हैं। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाबा साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टूले और पी बी कुलथे, ये हमारे साथी हैं। गांव गोंदर, जिला करनाल से किरणपाल मुंबक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी, भगत सिंह मुंबक, और ये हमारे साथी हैं। आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल, जवाहर नगर दुर्ग से, और ये संदेश हमारे इन दोस्तों का। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत, मयंक और परिवार के अन्य सदस्यगण, गांव फलसंडा जाटान कुरुक्षेत्र से आप हैं विक्रम योग भारती, हरमन योग भारती, संध्या सैनी, खुशप्रीत अम्बली, और ये संदेश हमारे इन दोस्तों का। झारखंड सुपाही साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश, निशा, रेशमा, दीपाली और देवेन। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए। मोहम्मद रफी की ही आवाज में ये सदाबहार गीत आपकी नजर।

काजल फिल्म का ये गीत श्रोता दोस्तों साहिर के बोल, रवि का संगीत और रफी की ही आवाज़।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

गांव मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से आप हैं यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल, शुभम, प्रियंका, आंचल, कुंज, परव, परवीन, चिराग, रजत और राजेश धीमान, ये हमारे साथी हैं। लाल माता सुदामा नगर, रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहरी, प्रभुलाल बागड़ी। और ये संदेश हमारे इन दोस्तों का, काशगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव और भानुप्रिया। श्रीराम गोंधली, उषा, वैष्णवी, पूनम, युवराज, आप सब हैं भावी निमगांव महाराष्ट्र से। और ये हमारे साथी हैं देवेंद्र ताती, राकेश, प्रकाश, निशा, रेशमा, दीपाली और देवेन। रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, आप हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। तो श्रोता दोस्तों, लीजिए अब सुनिए ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोतो दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में स्वयंवर फिल्म से

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
5: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingri Ghatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
4: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that Six missiles were intercepted, while a seventh failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among U.S. personnel. In tennis, Russian ace

0: Defeated Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maja Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11:10 अब होते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।